जग में चेत्यो जान के जग में रहो समाए जिन हर का नाम न चेत्यो बादे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की अवरे आस निराश नरक परे।

काल पाछे कछु न होए बात जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत इक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना।

सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक अंधे एक ना ला गई जो बांस बजाये फूक। कबीर है गए बाहन सगन कन छत्रपति की नार ताश पटम करना पूजा।

हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोरै बित कबीर सेवा को दोए भले।

0: कीचड़ आटा गिर परया किछू न आयो हाथ। पीसत पीसत चाबिया सोई निभिया साथ।
1: कबीर मन जाने सब बात जानत ही औगन करे।

ताबत रखे ता राम भजे नाहे ता बिनती बात। कबीर के सो कू किए ना सोए सारे,

केवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख को श्री पारस आगे खोले, कोई आए मिले जो गाती ले गो महंगे मोल। कबीर राम नाम जाने।

जीवंते पंछी चले दिसावरी बिरखा सुकल कलंक। कबीर साधु संग परापति लिखिया होए लीलात, मुकुट पदार्थ पाये खाक न अवगत काट। कबीर एक करी आदि करी आदि हूँ ते आदे, भगतन से

खल डूंगर पवे होम अज करी दे कूजड़ा सै को माखी ओम राती वड्डियां कुक उठन पास सिज तिना दा जीरिया दिना विदानी आस करीदा जे ने होंदा वारिया नित्ता आयड़िया हेरा जले

बुड्ढा हुआ शेख फरीद कंबन लगी देह जे सोवरिया जीवना पीतन हो सी तेरे फरीदा।

कंध कुहारा सिर कड़ा वन के पर लोहारे खरीदा हो लोड़ी सो अपना तू लोड़ है अंगियार खरीदा इतना आटा।

ओ लबी वाते थप्पड़ तू मैं क्या हो चिकर डुबे हाथ फरीदा नंदी संत नारायण वड़ी सी मोया।

हंस न कोदरा खाए, चल चल गईया पंखियां जिनी वसाए तले, फरीदा सर परिया पी चलसी थके कवले कले। फरीदा इत सिराने तोए सन कीड़ा लड़ियो मास, केतड़िया जुग वापरे इकत पया पास। फरीदा पन्नी कड़ी सवन वी टुटी नागर लाजे, अजराइल फिरिश्ता कै कर नाथी।

फरीदा खालक खलक में खलक वसे रब माही, मंदा किसनो आखी है जा किस दिन कोई ना है। फरीदा जे जेह नाला कपया जे गल कपे दुख, पवन ना इकी मामले सहाना इकी दुख। चबन चलन रतन से सुनियर गए गए, हेरे मुक्ती पासे जानी चल गए। फरीदा बुरे दा पला कर गुस्सा मन न हंडा।

रब खजूरी पक्या माके नहीं वहन जो जो वंजे दीहड़ा सो उम्र हथ पवन खरीदा तन सुखा पिंजर किया तलिया खूंडे काज अजय सुरब न बहुड़ो देख बंदे के पाज काजा तरंग तंडोलिया सगला खाया मास एदे लेना मत हो फिर दे सन की आस काजा चूंड ना पिंजरा बसे ता उदर जाहे जित पिंजरे मेरा सो वसे मास न तिद्दू खाहे फरीदा गोर निमाणी सड करे निकरिया कर आओ।

हल वसन रब न छोड़न पास। फरीदा रुत फिरी वन कंबिया सप चढ़े चढ़ता है सारे कुंडा टूंडिया रहन किताऊ नाही। फरीदा पार पटोला तज करे कंबलड़ी पहरे ओ जिनी वेसी सो मिले से वेस करे ओ। महला तीजा काय पटोला पारती कंबलड़ी पहरे नानक कर ही बैठिया सब मिले जे नियत रास करे। महला पंजवा फरीदा गर्भ जिना

रावणे जिना विसारे नाओ कैसे दुख कनेरिया अग्गे थौर न छाओ फरीदा पिछल रात ना जाग्यो जीवन दरो मोयो ए जे तें रब विसारिया ता रब ना विसरयो ए महला पंजवा फरीदा कंक रंगावला वड्डा वे मुमताज।

क्या चलै किस नाल इक जा बंदे नाल हन कितना कुत्तियां दे उठाल तू देंदिए सुहाग को सौ तन काई कोर जिन्ना नाव सुहागनी तिन्ना छाप न होर सबर मंज कमान ए सबर का नीहनो

सिर तल उपर पाओ। मैं जानिया वडहंस है ताने की पासंग, जो जाना बग बपुड़ा जन्म न पेड़ी अंग। क्या हंस क्या बगुला जाको नदर करे, जो किस पावे नानका सागो हंस करे। सरवर पंखी हे करो फाही लाल पचास, तन लें।

तो कमस को पत्थर कहाँ गुण कमस को मणिया मंत्र कमस को वे सोहा करी जित वस आवे संत निहन को अक्षर खान गुण जो बा मणिया मंत के प्रतने वेश कर तावस आवी संत मत होंगी हे इहाना तान होंगे हे निताना अन होंगे आप बंदाए को ऐसा पगत सदाए एक सिक्का ना गालाए सब नाम सच्चा तई याओ न कही ठाहे मानक सब अमोल वे सबना मन

पार नहीं तुम भरे, हर अंत नहीं पारावार, कौन है करे विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुले ब्रह्म संसार, एक दिन क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बल हार, अमृत प्रवास हर अतुल भंडार भर, परे ही ते परे अपर अपार पर, आपनो भावन कर मंत्र न दूसरो धर, उप तो कर लो एक निमक तो भर, आन नई समसर उजियारो निर्मल कोट करा छते, जाए नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दल कुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाने, हाँ के बल बल बल बल सद बल हार।

जन नानक भग दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बतन है हाके बल बल बल बल।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हर्षवंत आनंद रूप निर्मल विगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं।

जय कृपाल हर हर भयो, हर गुरु नानक जिन परसो, से जन्म मरण दो ते रहो। सत सत हर सत, सत सत सत भणिए, दूसर आन न आवर पुरखे, पुरातन सुनिए। अमृत हर को नाम लेत मन सब सुख पाए, जे रसन साखो तै जन तृप्त अधाए। जे ठाकुर सो परसन भयो, सतसंगत तै प्यार, हर गुरु नानक जिन परसो, तिन सब कुन कियो उधार। सच सभा दीवान सच सचे तै धरयो, सचे सत निवास सच तथावस करयो। सच सुन जो सन

हर तारन तरन समरथ सवैद कुल समूह उदारन सो चित चेत अचेत जान सत संगते भरम अंधेर मोयो कत भौ मूरत घड़ी सापल सिमरन राम नाम रखना संगलो होतो काज अलग सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख भौ सिखा संत नाम भजनान के राम रंग आत्म स्योरों रंच करे खेत तन निर्मत दुर्लभ दे सवार भरी खान पान सो दे सुख भुंचत संकट काट विपत हरी मात का भाई अर बंधते बूझन के सब सोज परे बरमान होवत दिन प्रतिनित आवत निक

ज्ञान के काट भरम भरे रे मन मूस बिलावे गर्वत कर्तव करत महाम भुना संपत धौल झूल संग झूलत माया मगन भरमत घुगना सुत बनता साजन सुख बंदते तासु मो बड़ो सुघना बोयो भीत अहं मम अंकुर बीतक औध करत अधना मृत मंजार पसार मुख निरखते भुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नाम के जगे जानत सुपना देह न ने न नीता माया मत कहा लो मादारो देह न देह न ने न नीता माया मत कहा लो गारो छत्र न पत्र न चौर न चावर बैठी जात हृदय न विचार रक्त न अश्व न गज सिंहासन छिन में त्यागत नाम सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोश न छोटा कर्त विकार दो कर झारो मित्र न पुत्र कल्प साजन सुख उल्टत जात बिरख की छारो दीन दयाल पुरख प्रभु पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपत नाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो प्राण मान दान मग जोहन चीत चीत दे ले ले तारी साजन सैन मीत सुत भाई ताऊ ते ले रखी निरारी धावन पावन सूर कमावन एह करत औध तन जारी करम धर्म संजन सुख सुचनेमा करम धर्म संजन सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारी पस पंखी बिरख अचावर बहुत जोन भम्यो अत भारी छिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उधरे और माया मगन चले सब डारी ब्रह्मांडक शिव छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरत धरण गगन आवत फुन धावत सिद्ध मांस

जम दो तन डन मृत मरो है। अंत जौन संकट नरक भुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है। प्रेम भगत उधरे सेनान के कर कृपा संत आप करो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आसमारी। औषध मंत्र तनक पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मद सर कृष्णा बिन सजाए हर।

कब कल सुदसुदाओ गुरु नानक राज जोग दिन मानियो। गावे गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मा दत्त स्मरंत गुणाम। गावे गुण शेष सहस जेदा रस आद अंत

भगत दीन गुण रहे सहज आत्म रंग माणे, योग ध्यान गुरु ज्ञान बिना प्रभ आवर न जाए। सुखदेव परिखत गुण रहे गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस ना।

जातु दृष्ट अमृत धार, काल को खन उतारे तिमर अज्ञान जाए दर्श द्वारे। ओ जो

सतसंगत सहज सारे जागिले गुर बिचारे निमरे भूत सदीव परम प्यारे कौ तीरथ कल सहारे सतत दीप मझारे लेना जगत गुर पर समुरारे तै तो दिलियो नाम अपारे बिमल जास बिखारे साधक सिद्ध

लैणा जगत गुरु पर समुरार। दृष्ट भरत तम हरण दहन अघ पाप परासन। सबद सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन। लोभ मोवश करण शरण जाचिक प्रतपालन। आत्मरत संग्रहण कहन अब

गुरु जगत प्रण सुयंगरो राज जोग लेना करे। सदा अतल्य रहे करण सिंह इच्छाचारे। गम सपूर जीवन खवे कस बिमल विचार। एह तत जानियो सरबगत अलग विद।

गरल नास कन न छयो अम्यो अंतर्गत पियो रुद बिनास जागयो अलग कल धरी जुगंतर सतगुर सहज समाद रहयो सामान निरंतर उदारो चित दारद हरन तिखंते कलमल प्रसन्न सब रंग सहज कल

बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट हो रवलो दर्शन परसे गुरु कै अठ मजन हो सच तीरथ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच भाषंत सो है सच पायो गुरु सबरे सच नाम सुगंती बो है जिस सच संजम वर्त सचे कब जन कल्व खाने दर्शन परसे गुरु कै सच जन्म परवाणी हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सदै बल सदा

तीरथ राव तिर प्रगण संसारे सात सरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम जय जयकार जपंत नरा हर नाम रसन गुरुमुख बरदायो उल्ट गंग

सोई नाम अचल भगते भवतार। अमरदास गुरु को पुरिया तित नाम लागते तुझसे धयावे जति कपि

सत नाम गो गंभीर गुरु मत सत कर संगत उदरिया सोई नाम असल भगत भाव तारण अमरदास गुरु को पुरिया नाम चित संसार किरण रहो सुर कर साथे उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस भाके जन्म तयो सखे अत जित नाम हर दे निवासे सुर नर गण गंधर्व से दर्शन आशा से भलो प्रसिद्ध ते जो तनु कल जोड़ कर ध्यायो सोई नाम भगत वच भव जल हरन गुर अमरदास तय पायो नाम धयावे देव कैपीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड धारे जय नाम समाधयो हरक सोग समतर सहारे नाम शिरोमणि सर्वमयि भगत रहे निवधार सोई नाम परार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सत सूरो शील बलवंत सत भाय संगत सघन गुरु मत निर्वैर लिया जिस धीरज धुर धवल भुजा

बतायो अमर गुरु की खोजो। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुण सेवे जिस पसाए गत

हृदय बसो अतु हो सोए रसिन ही जातो मुखों भगत उतरे अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान

चरण तपर सकत चरण गुर अमर पवल हथ तपर सकत हथ लगे गुर अमर के जी तपर सकत जी गुर अमर भरजे

करवणी गुर अमर सुन जय सत सोहियो जित ही बसे गुर अमरदास निज जगत पिते सत्यत सो सुर जालक भणी जो सुर ने गुर अमर नितें।

लहे जाल पा पदार्थ इतने गुरु अमरदास दिखे मिले सच नाम करतार सुदृढ़ नानक संग्रह हो ताते अंगद नैना।

जप तप सत संतोख तिक दर्शन गुर सिखे सरण परे ते उबरे छोड़ जमपुर के लिखे भगत भाए भरपूर हृदय उचरे कर तारे गुरु गौहर दरिया पलक डूबंते तारे नानक कुल निमल अवतरो गुण कर तारे उतरे गुरु अमरदास जिन सवेओ तिन दुख दरिद्रे।

जब गुरु देखे सुबदिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो। गुरु अमरदास कारण करण जिम तो रखे त्यों रहो। दिखे के गुरु ज्ञान अर ध्यान।

क्रोधवश करे पवन उदंत न घावे। निरंकार के वसे देश हुकुम बोझ विचार पावे। कलमाए रूप करताप

धर्म धन कर गयो भगत शील सर लड़यो धन गोहर अटल मन सबद गुरु ने जाग दियो काम क्रोध लोभ मोह अपत

एक मन पुरखन अंगन ध्याओ, गुर प्रसाद हर गुण सद गाओ। गुण गावत मन होए दिगासा, सतगुर पूर जने की आशा। सतगुर सेव परम पद पायो, अदना से अवगत दिहायो। किस भेटे दारिद्र न चमते, कल सहार तार।

नाम निरंजन उर धरया। हर नाम रसक गोविंद गुण गाहते, चाहत तत समत सरे, कब कल ठकर हर दास ने, गुरु राम दास सर अबर भरे। छूटत प्रवाह अमेव अमरा तत, अमृत सरोवर सद भरया। ते पीरे संत करे मन मज्जन, उपजनो सेवा करिया। तिन भव निवार अन भय पद दीना, शब्द मात्र ते उधर धरे। कौन कर्ण छकुन हर दास तने, गुरु राम दास सर अवर भरे। सत गुरु मत गुरु

निरंजन खरेला। सतगुरु दयाल हर नाम दिलाया, इस पर साधवस पंच करे। कल कल ठाकुर हरदास तनी, गुरु रामदास सर अभर भरे। अनुभव अनुमान अकल लेव लागी, पारस भेटिया सहज घरे। सतगुर प्रसाद परम पद पाया, भगत भाए भंडार भरे। मेटिया जन मंत्र मरण भव, भागा चित लागा संतोष सरे। कब कल ठाकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अबर भरे। अबर भरे पायो अपार अंतर धारे, दुख भंजन

भरत परवासी तुम पुबली न होते सतगुर शब्द अथाओ अम्यो धारा रसगुत्ते मत माता।

श्री गुरु शरण भज कल कबे भुगत मुकत सब गुरु लगे। सतगुर खेमा ताणिया जुग जोत समाणी अनुभव ने।

पावे गुरमुख ध्यान दुर्मत मैल धोवे जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जते जिन जन दुख पाप को

सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाती सबद सार एक लेव लाई है। सुन जाने को तेरा अपारे निर्भव निरंकारे अकथ कथन हारे तुझे बुझाई है। भर्म

नाम सो अपार सार दीनो गुरुद धरे नल कौ पारस परस कच कंचना हुए चंदना सुभाष जास सिमरत अंतरे जाके देखत द्वारे काम को दे

पाँव तैनीर सर अवर अनल अनाद कियो सकड़ खनिस सूर दिन सैल करो फल फूल दियो सुर नर सपत सम

दास भट बेनत कहे, जो गुरु नाम हृदय में धरे सो जन्म मरण दोते रहे। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे। गुर कर सच बिचारे गुर करे मन मेरे, गुर कर शब्द सुपन।

करण समर्थ कलयुग सुनत समाज शब्द जिस केरे सुन दुखन नाश सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तैने रे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परे रे जोहर बुध हृदय सिद चाहती गुरु गुरे गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गरु सुख पायो होती जो प्यास प्यो सेवन की बंसत सिद को विद मिलायो पूरन भवन ठौर बसोरसे बासन शिव जो दंज सधायो गोविंद वाल गोविंद पुरी समजलन तीर विवास बनायो गयो दुख दूर।

देखे तरन अघन हरो। निसबा सुन एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भांडरो। भन दास आस जगत गुरु की पारस भेत परस करो। रामदास गुरु हर

सो प्राणियों शब्द हर हर जपे नाम नवनिध आपे रसन ऐनित रसे सत कर जानियों सुनु प्रेम रंग पाइए गुरमुखे ध्याइए अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियों बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो तो सब सुख

गुरु गुरु जप सत कर अगम गुण जान निधान हर मन धरो ध्यान ऐस करो बचन गुरु हृदय धर सुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुरु सिख करो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपे प्रेम गुरु शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगद मन भ्रम तजो नाम गुरु मुख भजो गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु जप सत कर।

उदत गुर गहर गवीर बेअंत हर नाम नगे हीर मन मिलत लेवलाये उन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुर्मत हिरते शब्द गुरु ध्याये अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुरु बिमल सर संत।

गुर मिलत मुन जन रे तरे नार दाद संकार हर गुरु मुखे तरे एक नाम लगत जो रस अन

प्रहलाद भगत उधयं हस्त कमल माथे पर धरियं अनख रूप जी लख न जाई साधक सिद्ध।

परमानंद गुरुमुख कयन पर तख दे पार ब्रह्म स्वामी आदि रूप पोखण भरण सतगुरु गुरु सेव

अवलोका ब्रह्म भरम सुब छुटकार, अवलोका ब्रह्म भरम सब छुटकार, दिव दृष्ट कारण करण सत गुरु गुरु सेव अलक गत जाकी, श्री राम दास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परदास भया,

करें पर भात शुद्ध मन गुरु पूजा दिज सहित करन। कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपे ध्यान धरन। जग जीवन जगन्नाथ जल थल मेरिया पूर्व विद बरन। सतगुरु गुरु सेव अलग

तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडली सुरजी सत संगते परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहेब सब ऊपर मा

इंद्रियों बले छलन सबल मलन भंग फलन कान कुवर नय कलंक बजी डंक चढ़े दल रविंद्रियों राम रवण दुर्त दमन सकल भ

पाता। गुरमुख संगत सवे विचारो, वाओ वाओ का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहा, अमृत ते मीठे जाके बचना। माने ब्रह्मा

सत संगत से ती मन खचना, किया खेल बड़मेर समासा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। अगम अनंत अनाद

गुर समरथ गए किरिया धू बुध सुमत समारन को उन धम दूजा फैरंत सदा अग पुंज तुरंग निवारन को मथुरा जन जान कहीं जे सासु और कछु न विचारन को हर नाम बहुत बड़ो कल में भव सागर पार उतारन को संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है ब्रह्म पंथ धर्यो धर्मी धर आप रहे ले धारण।

मन इच्छत ही फल पावत है। रव के सुख को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधास पर पूर्ण सब संग प्रगट तिन आदर। गहर गंभीर अथायत वन सुबर सदा सब विद रत्नागर। संत मराल करे कंतु हल तिन जम प्रास मिट्यो दुख का।

मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कभू को पावे आत्म परदास को। वेद बाणी सहत ग्रंथ जस गावे जाको शिव मुन जैना तजात कबिलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप गदा झूठ भेद किए फिरत उदास को। सोतम सतगुण सुख भाई कृपा।

तेज पुंस लोक प्रजा से देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभते अल समूजो कुसुम सुबासे विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे तारो संसार माया मद मोहते अमृत नाम दियो समरथे उन कीरतवंत सदा सुख संपते रिद्ध अर सिद्ध न छोड़।

जाके बसीस धर्यो गुर हथे। तीन भवन भरपूर रहो सोई, अपन तरस कियो ना जगत कोई। आपन आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे, असुरे नर गण गंधर्व को जंत फिरे। अविनाशी अचल अजौनी, संभो पुरखो तुम आपार परे। करण कारण समरथ सदा।

आयो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन, मन धन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज धारी, अगम ज्ञान रस रस हियो। गुरु अमरदास।

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा कुब भगत हर के जुगणन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा और कबीर भणन तिनको अवतार।

मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिणन। बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिणन। कर्म कर तो दर्श परस पारस फल बल भट जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तैं हर परम पद पायो। जे सित सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जय सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। जय सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नव निध पावे। सोई रामदास गुण बल भण मिल संगत धन धन करो। जय सतगुर लग प्रभ पाइए सो सतगुण सिमरो नरो। जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड़ो पासे। सांते गौहर ज्ञान प्रगत उजियारो दुख दरिद्र अंध्यार को नाशे। कव कीरत जो संत चरण मुण लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ज्यों अंगद अंग संग नानक गुर त्यों गुरु अमरदास कै गुरु रामदास। जिन सतगुरु सेव पदार्थ पायो निस बासुर हर चरण निवास। सांते संगत सग

जै तिखत अत होए रहस मन सोई। संत सहार गुरु रामदास, नानक नाम निरंजन जानो तीनी भगत प्रेम निवलाई। आते अंगद अंग संग भयो सायर, तिन सबद सुरद

जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सो जस वखाण्यो भगत जोग को जैतवार है।

वेदन भर सहता भय बंजन पर पीर निवारण कल्पहार तुए जस भगता कुल सौदी गुरु रामदास तन धर्म भुजा अर्जन हर भगता।

कहो मथुरा अमृत बैन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम सत संतोख धर्यो आद पुरख पर तथे लिखो अक्षर मस्तक धुरे प्रगट ज्योत जगमगे।

पाए, बौरस साल ने सवार दी खटवस मीठे पाए। त्यों बाणी पगत सलांदे हर नाम चित लाए, मन तन तन आगे राखिया सिर वेचिया गुर आगे जाए। पै पगती पगत बहु लोचदे।

0: नाम रतन पर गाशिया मन तन निर्मल होए। नाम हीन नक्शे फिरे दिल नावे बह रोए, नानक जो तुर करते लिखिया सो मेट न सके कोए। गुरमुखा हर तन खटिया गुर के शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुत परे पंडार। हर गुण बाणी उचरे अंत न पारा वार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार।
1: गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़या दसवें आकाश, तिथे ऊंग न पुख है हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथे आत्म राम प्रगास। काम क्रोध का चोलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजे एक बिनस जाए हुक्मे आवे जाए। जम्मन मरण न चुकई रंग लगा दूजे भाए, बंधन बंद भवायन करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियन तिना

पुत कलत मोह हेत है अंत बेली को न सखाए सतगुर सेवे सो सुख पाए नाम वसै मन आए नानक से वड्डे वड पागी जे गुरमुख नाम समाए मनमुख नाम न चेतनी बिन नाम है दुख रोए आत्मा राम न पूजनी दूजे क्यों सुख होए।

बिख का मारण हर नाम है, गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिलिया आए, मिल सतगुरु निर्मल होया बिख हो मैं।

सतगुरु पुरख निर्वैर है, नित हिरदय हर लिवलाए, निर्वैर नाल वैर रचाएंदा, अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है, अंदिन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित पौंक दे, बिख खा दे दूजे भाए, बिख माया कारण परम दे, फिर कर कर पत गवाए, बेसवा के रे पूत ज्यो पिता नाम तिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरुमुख कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए, जन नाम

आनंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरदार। एथे ओथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द सियाप दे तित साचे दरबार। सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार।

जन की टेक हर नाम हर बिन नाम है ठवर न ठाओ गुरमति नाव मन वसै सहजे सह समाओ वडपागी नाम ते आया एहन सलागा पाओ जन नानक मंगै तूर तिन हो सद कुरबाने जाओ लख चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार ए मोह माया सब पसरिया नाल चले नामती वार बिन हर शांत ना आवई किस आगे करी पुकार वड पागी सतगुरु पाया बूझया ब्रह्म विचार तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर उरदार असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत ना पारा वार हर कृपा करके बख्श लियो हों पापी वड गुनहगार हर जियो लेखे वार ना आवई तू बख्श मिलावन हार गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए जन्म मरण ने चल भये गुरमुख नाम ते आए गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लवन।

सो मन ना वस्यो गुणतास, ते मन शब्द ना पे दियो क्यों होवे करवास, मन मुखिया दोहागनी आवन जान मोयास, गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास, हर हर नाम उर्धारिया हर हृदय कमल प्रगास, सतगुर सेवन आपना हो सद बलिहारी तास, नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास, शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्द मुक्त न होई, पेख तरह बहु कर्म विगुते पाए दूजे परज विगोई, नानक बिन सतगुरु नाव ना पाईए जेसो लोचे कोई, हर का नाव अत वड ऊंचा ऊंची हु ऊंचा होई, अपड़ कोई न सके जे सो लोचे कोई, मुख संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई, गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई, अंतर आय वसे गुर शब्द विचार है कोई, नानक

माया मोह दुख सागर है, बिख दुत्तर तरे आना जाए। मेरा मेरा कर दे पच मोए, हों मैं करत विहाय। मन मुखा उरवार न पार है, अद विच रहे लपटाए। जो तुर लिखिया सो कमावना, करना कछु न जाए। गुरमति ज्ञान रतन मन वसे, सब देखिया ब्रह्म सुवाए। नानक सतगुरु बोझै वड पागी, चढ़े ते पौजल पार लंगाए। बिन सतगुरु दाता को नहीं, जो हर नाम दे आधार। गुर कृपा ते नाव मन वसे, सदा रहे उर्धार। तिसना बुझे तिपत होए, हर कै नाए प्यार। नानक गुरमुख पाइए, हर अपनी कृपा धार। बिन शब्द जगत बर लिया, कहना कछु न जाए। हर रखे से उबरे, शब्द रहे लिवलाए। नानक करता सब कित जानदा, जिन रखी बनत बनाए। होम जग सब तीर्था, पढ़ पंडित थके पुराण। बिख माया मोह न मिटई, विच हों मैं आवन जान। सतगुरु मिले मल उतरी, हर जपिया पुरख सुजान। जिना हर हर प्रभ सेविया, जन नानक सतगुरु बाण। माया मोह बहु चितव दे, बहु आशा लोभ विकार। मन मुख अस्थिर नाथी है, मर बिनस जाए खिनवार। वड पाग होवे सतगुरु मिले, हों मैं तजै विकार। हर नामा जब सुख पाया, जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुरु भगत न होवई नाम।

जिथे हाथ न पाए, मनमुख छेती संकरे मोह कालक दाग लगाए, मोह काले तिन लोभियां जासन जन्म गवाए, सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम वसै मने आए, जन्म मरण की मल उतरे जन नानक हर गुण गाए, तुर हर प्रभ कर तै लिखिया सो मेटना ना जाए, जियो पिंड सब तिसदा प्रतपाल करे हर राए, चुगल निंदक भुखे रुल मोए ए ना हाथ ना किथाऊ पाए, बाहर पखंड सब कर्म करें मन हृदय कपट कमाए।

मन आवन जान ना सुजई ना सुजै दरबार माया मोह पलेटिया अंतर अज्ञान गुवार तब नर्थ पा जा गया सिर डंड लगा बहु पार गुरमुखा करा उपर हर चेतिया से पायन मोख द्वार नानक आप ओह उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस्त्रा पे हर दरगे गुर सब जापे बिन शब्द मुआ है सब कोए मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम न चेते अंत दुख रोए नानक करता करे सो होए गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवे अंतर सहज ज्ञान ओए सदा आनंद विवेक रहे दुख सुख एक समान तिना नदरी इको आया सब आत्म राम पहचान मन मुख बालक बिरद समान है जिना अंतर हर सुरत नाही विच हो मैं कर्म कमाव दे सब धर्म राय कह जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कह शब्द सुवाए ओना मैल पतंग ना लग गई जे चलन सतगुरु भाए मन मुख झूठ ना उतरे जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेले।

नानक गुरमुख मन च्यों लुजै, जिना सतगुर पुरख न सेवियो शब्द न कीतो विचार। ओए मानस जून ना आखियन पशु टोर गावार, ओ ना अंतर ज्ञान ना ध्यान है हरसों प्रीत ना प्यार। मन मुख मोए विकार में मर जमे वारो वार, जीव दयानो मिले सो जीव दे हर जग जीवन उद्धार। नानक गुरमुख सोने सिद्ध सच्चे दरबार, हर मंदर हर साजिया हर वसै जिस नाल, गुरमति हर पाया माया मोह पर जाल। हर मंदर वस अनेक है नव नाम समाल, तन भगवंती नानका जिना गुरमुख लद्दा हर पाल। वड पागी गढ़ मंदर खोजिया हर हृदय पाया नाल, मन मुख दै दिस फिर रहे अत तिसना लोभ।

पुर सेव सुख पाया अत तिसना तज विकार, जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द विचार। हर हर नाम से आए मन हर दरगह पावे मान, किलविक पाप सब कटिए हों मैं चुके गुमान। गुरमुख कमल विकसिया सब आत्म ब्रह्म पहचान, हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जप हर नाम। तनासरी तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए, तन मन सौंपे जी सो भाई लय हुक्म फिराओ। जय बैसावे बैसे भाई जय पे जय ते जाओ, एवड तन होर को नहीं भाई जेवड सच्चा नाओ। सदा सच्चे के गुण गावा भाई सदा सच्चे के संग रहाओ, पैनन गुण चंगियाईया भाई अपनी पथ के साथ आपे खाए। तिसका क्या सालाई है भाई दर्शन को बल जाए, सतगुर विच वडियां वडियाईया भाई कर्म मिले ता पाए। इक हुकम मन ना जाननी भाई दूजे भाई फिराए, संगत तोई ना मिले भाई बैसन मिले ना थाओ। नानक हुकम तिना मनाए सी भाई जिना तुरे कमाया नाओ, तिन विटो हो वारिया भाई तिन को सद बलिहा रह जाओ। से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लगन, अंदन सेवन गुर आपना अंदन अनद रहन। नानक से मुह सोहने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए। सच्चा शब्द मन वस्या सतगुर माहे समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे। सच सुने सच मन लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगे बैसना सच्चे माहे समाए। नानक बिन सतगुर सच ना पाई है मन मुख भूले जाए। बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निज प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दूर।

तेरा छाए पवै गुरमुख होए अलाए शब्द चीन तिक उतरे मन लै रजाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवै सह चवाए जल ही ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागे आए बाबी हा तू सहज बोल सत्य शब्द सुवाए सब किस तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए आप पछाणे प्रीतम मिले उठा छह बरलाए चिम चिम अमृत वरसदा तिसना पुख सब जाए फूक पुकार न हो वही ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए तुरों खसम पेजिया सच्चे हुकम पठाए इंद वरसे दया कर गूड़ी छह बरलाए बाबी हे तन मन सुख होए जा तत बूंद मोह पाए अन तन बहुता उपजे तरती शोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कह शब्द समाए आपे सच्चा बस लय कर कृपा करे रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चे शब्द समाए पै का सह सिंगार करो सच रहो लिव लाए नानक नामो मन वसै हर दरगे ले छड़ाए बाबी हा सगली तरती जे फिरे ऊट चढ़े आकाश सतगुर मिले जल पाईए चूके भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किस तिसके पास बिन बोलिया सब किस जानदा किस आ गए की चै अरदास नानक कट कट एको वरतदा शब्द करे प्रगास नानक तिसे बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब पर फड़े सब जग हरियावल होए सब दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरे जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख वस्या मन सोए हर उठे मन तन पर फड़े सब जग हरिया होए वडड़े चाल चलुंबड़े नावड़ा लिये किस नाव लिये परमेश्वर पन्नन करण समरथ हर हट भी तू तू करे बोले पल्ली बाण साहिब सदा हदूर है क्या उच्ची करे पुकार जिन जगत उपाय हर रंग किया तिसे विटो कुर्बान आप छोड़े ता सौ मिले सच्चा यो विचार हो मैं फिक्का बोलना बुझ न सका कार वन त्रिण त्रिभुवन तुझे त्याईदा अन दिन सदा विहान बिन सतगुर किने न पाया कर सके विचार नदर करें जे आपनी ता आपे लहें सवार नानक गुरमुख जिनी त्याया आए से परवान जोग ना पगवी कपड़ी जोग ना महले वेश नानक कर बैठिया जोग पाई है सतगुर कह उपदेश चारे कुंडा जे पवे बेद पड़े जुग चार नानक साचा फेटे हर मन वसै पावे मोह द्वार नानक हुकम वरते खसम का मत पवी फिरे चल चित मनमुख सौ कर दोस्ती सुख के पुछे मित गुरमुख सौ कर दोस्ती सतगुर सौ लाए चित जम्मण मरण का मूल कटिए।

बिन दर्शन क्यों तृप्तियै, नानक मिले सुभाए गुरमुख के मन रहसियै, जिना प्री प्यार क्यों जीवन फिर बहारे, जासो देखन अपना नानक जीवन भी हरे, जिना गुरमुख अंदर ने हो तै प्रीतम सच्चै लाया, राती अतै डे हो नानक प्रेम समाया, गुरमुख सच्ची आस की जित प्रीतम सच्चा पाई है, अंदर रहे आनंद नानक सहज समाई है, सच्चा प्रेम प्यार गुर पूरे ते पाई है, कबहू न होवे पंग नानक हर गुण गाई है, जिना अंदर सच्चा ने हो क्यों जीवन फिरी विहुनिया, गुरमुख मेले आप नानक चिरी विछुनिया, जिनको प्रेम प्यार सो आप पहलाया कर्म कर, नानक लेहो मिलाए मैं जाचक दीजे नाम हर, गुरमुख हस है गुरमुख रोवे, जे गुरमुख करे साई भगत होवे, गुरमुख होवे सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार, जिना अंदर नाम निदान है गुरबाणी विचार, तिनके मुखसद उजले तिस सच्चे दरबार, तिन बैंदिया उठदिया कदे ना विसरे जे आप बख्शे करतार, नानक गुरमुख मिले ना विछड़े जे मेले सृजनहार, गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार, नदर करे जिस आपनी तिस लाए हे प्यार, सतगुर की सेवे लगिया पौजल तरह संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार, नानक सतगुर मिले प्रभ पाई है सब दुख निवारण हार, मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चितलाए, कुट कलत कुटंब है माया मोह वधाए, दरगह लेखा मंगी है कोई अंक ना सकी छाए, बिन नावे सब दुख है दुखदाई मोह माए, नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए, गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए, हुक्मो सेवे हुक्म अरादे हुक्मे समय समाए, हुक्म वर्त नेम सुच संजम मन चिंदिया फल पाए, सदा सुहागन जे हुक्मे बूझे सतगुर सेवे लिव लाए, नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लहे मिलाए, मन मुख हुक्म ना बुझे बपड़ी नित हो मैं कर्म कमाए, वर्त नेम सुच संजम पूजा पाखंड परम न जाए, अंकरों को सुध माया मोह बेदे ज्यों हस्ती छार उड़ाए, जिन उपाय तिसे न चेते बिन चेते क्यों सुख पाए, नानक परपंच किया तुर करते पूर्व लिखिया कमाए, गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अंदिन सेवा कर समाए, अंतर सतगुर गुरु सब पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए, मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए, हों सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्रभ सच्चा दे मिलाए, नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए, जिन प्रिया सोने हो से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हों फिरा पी हृदय रखा समाल, जिना एक मन एक चित ध्याया सतगुर सो चित लाए, तिनकी दुख पुख हों मैं वड्डा रोग गया निर्दोख पै लिव लाए, गुण गावे गुण उचरे गुण मैं स्वय समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याए, मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार, कूड़ कमावे कूड़ संग रह कूड़ करे आहार, दिख माया तन संच मरे अंत होए सब चार, कर्म धर्म सुच संजम करे अंतर लोभ विकार, नानक मन मुख जे कमावे सो थाए न पवे दरगे होए खुआर, सब ना रागा विच सो भला भाई जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है कीमत कही ना जाए, रागे नादे बहारा इन्नी हुक्म ना बूझिया जाए, नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सो जी पाए, सब किस तिसे होया ज्यो तिसे धीर जाए, सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए, गुरमति नाम निर्मलो निर्मल नाम ते आए, अमृत बाणी तत है गुरमुख वसे मन आए, हृदय कमल प्रगासिया ज्योति ज्योत मिलाए, नानक सतगुर जिन को मेलियन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए, अंदर तिसना अग है मन मुख पुख ना जाए, मोह कुटंब सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए, अंदिन चिंता

सतगुरु पुरख हर त्याय दा सतसंगत सतगुरु भाए सतसंगत सतगुरु सेव दे हर मेले गुरु मिलाए यो पौजल जगत संसार है गुरु बोहित नाम कराए गुरु सिखी पाणा मन्या गुरु पूरा पार लंघाए गुरु सिखा की हर तूड़ दे हम पापी भी गत पाए गुरु मस्तक हर प्रम लिखिया गुरु नानक मिलिया आए जम कंकर मार बिदारियन हर दरगे ले छाए गुरु सिखा नु सावास है हर तुखा मेल मिलाए गुरु पूरे हर नाम दिलाया जिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीर्त गाए कर चानन मग दिखाया हों मैं मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमती जम जोहे न सके सच्चे नाय समाया सब आपे आप वर्त करता जो पावे सो नाय लाया जन नानक नाउ ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया मन अंतर हों मैं रोग परम पूले हों मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सज्जना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन रात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुरु नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुरु के गुल बोले।

पांचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगाल मध माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी भात अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशल।

माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशक उभारा खौखट औ पौरा नद गाये अष्टमाल कौशक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंचनार।

आनंद पास करियाए चंद्रबिम मंगलन सोहाए सरसबान आओ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कांगरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग में गावे पांचों संग बिरंगन लावे।

सुख पाइए इकना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक।

साच नाई पाखिया भाऊ अपार अख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार मुहों के बोलन बोलिए।

पुछताई। कागज कलम ना लिखन हार, मन्ने का वह कर्म विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की।

आओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे।

अगम अगम असंख लो, असंख कह सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

एक वार, जो तुझ पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे।

तो कमण कमण थित कमण वार कमण से रुति माह कमण जित होवा आकार वेर न पाया पंडती

कोई जा करता सिर ठीक कौ साजी आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आख।

आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा आसुलू एक तात लेखा हुए ता लिखिए लेखे हुए वनास नानक वड्डा आखिए।

पवह समुंद ना जानिए है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होमनी जे तिस मनो ना विसर है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत न करने देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहु अंत न जाने कोई बहुता कही।

आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना कमाए केते मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं वीच।

आहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करे ता आख ना सकहें के जेवड़ भाव।

देवतियां दर नाले गावे हैं सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारी गावन जति सती संतोखी गावे हैं वीर करारी गावन पंडित पंड रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे हैं मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सूरा गावे हैं खानी चारी गावे हैं खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे हैं जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारी सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात शाहु सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत चोली।

आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग वजोग दुहकार चलावह लेखे आवह भाग आदेश दिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै।

आद अनिल अनाद अनाहक जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एकावार कर कर वे कह सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सया देश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी पौ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखियह एक नाम जगदीस एक राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अतीस सुन गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै थीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरन नह जोर जोर न राज माल मन शोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म।

जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आख हो कर्म। केते पवन पानी वह संतर, केते कान महेश, केते बर में काड़त करिय है।

नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड की वाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कह पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे

राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारी गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठी देव

कामन तुदनो पंडित पढ़नर खीसर जुग जुग वेदा नाली गामन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पाए आली गामन तुदनो रतन उपाए तेरे अठ सठ तीरथ नाली गामन तुदनो जोध महाबल सूरा गामन तुदनो खानी चारी गामन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले।

सोई सदा सत साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन पपाई कर कर देखे कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहा पत साहिब नानक रहन रजा।

सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वडियाई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धां पुरखां कियां वडियाईया तुद मिन सिद्धी किने ना पाईया कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया।

राग गूजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करहूं गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरण।

खाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत, जित हर रस पाया,

सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाऊ, जन पिता लोक सुत बनता, हुए न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पहु करिया, उडे उड़ आवे सह कोसा, तिस पासे बचरी शरिया, तिन कवन खलावे कवन चगावे, मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमय अपारा सब त्यावह है सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्याव

तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुझ जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूती जमती फासी जिन निर्भउ जिन हर निर्भउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुदे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करह सो होई तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सह का जा लोई आसा महला चौथा तू कर

या सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला इत सरवरड़ पहले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डुबियाले मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूरख मुगदा।

अब चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे सगल बनराए फूल अंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाव सहस तव नैन नन नैन है तुहि कहो सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंद बिन सहस तव गंद इव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोई किस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभत मनो।

क्रोध लगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडाही पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाही कर साधु अंजुली पुन बड्डाही कर दंडौत पुन बड्डाही रहाऊ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हों मैं कंडाही ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पावह जमकाल सह सिर डंडाही हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम

सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आउ गुपत प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाउ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाउ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाउ मत देख भूला विसरै तेरा चेतना आवे नाउ श्री राग महला पहला।

दास जित बोले पत पाईए सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भावे है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले जिन हिरदै रहिया समाए तिनका क्या सा लाहना।

जित सेवियै सुख पाईऐ तेरी दरगाह चलै मान। रहाउ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाम। सुनह वखाण है जेतड़ी हों तिन बलिहारै जाउ। ता मन खीवा जानियै जा महली पाए थाउ। नाउ नीर चंगियाईया सत परमल तन।

पास सो क्यों मनहो विसारिय जा के जी प्राण तिसविन सब अपवित्र है जीता पहनन खान होर गल्ला सब कूड़िया तुद भावे परवान श्री राग महल पहला जाल मोह घस मस कर।

सब रस मिठे मन्ने सुनिए सालोनी खट तुरसी मुख बोलना मारन नाल किए छत्ती ही अमृत भाओ एक जां को नदर करे बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादे तन पीड़िए मन मह चलहै वेकार रहाओ रत्ता पहनन मन रत्ता सोपे दी सतदान नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान कमर बंद सन।

तहाँ कर मंदर खुशी नाम की नदर तेरी परवार हुक्म सोई तुद भावसी होर आखण बहुत अपार नान।

जाए। जो तिस भाणा सो थीऐ अवर ना करना जाए। गुरमुख वस्त वे साहीऐ सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणंजिया

लहै दरगाह झूठ खुआर रहाउ आप सुजान ना भुलै सच्चा वड किरसान पहला धरती साधकै सच नाम दे दान नौ निध उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर कौ जान ना जाने क्या तिस चज अचार अंधलै नाम वसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान ना चुकई।

फिर लागू पई पूर्व जावे तूर बिन शब्द परमाई है दुबदा डोबे पूर मन रे शब्द तरहो चित लाए जिन गुरमुख नाम ना बूझिया मर जन्मे आवे जाय रहाउ तन सूचा सो आखी है जिसमें साचा नाउ पै सच राती देहोरी जेहवा सच सुआउ सच्ची नदर निहाली है बहुड़ ना पावे ताउ साचे ते पवना पया पवने ते जल होए जल ते त्रे पवन साजिया घट घट जोत सम

गुरमुख नाम सलाहिय हौ मैं निवरी पाही रहाव। सुन सुन गंडन गंडिय लिख पढ़ बुझह पार। तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओहो वे परवाहु अतोलवा गुरमुख कीमत सार। लख सियाणप जे करी लख सियों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया।

जित घर जाई है तित जीवंदिया मर मार अनहद शब्द सुहावने पाईए गुर विचार अनहद बाणी पाईए तह हउमै होए बनास सतगुर सेवे अपना हउ सद कुरबाणै तास खड़ दरगाह पैनाईए मुख हर नाम निवास जह देखा तह रव रहे शिव शक्ति का मेल त्रिहु गुण बंदी देहरी जो आया जग सो खेल बेजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल मन बैरागी घर वसै सच भै राता होए ज्ञान महारस भोग वै बहुड़ भूख ना होए नानक एहो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए श्री राग महला पहला एहो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लुभान

दिन सरात गुरमुख हर धन जान सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित अहनस हर प्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कूकर कूड़ कमाई है गुर निंदा पचै पचान परमे पूला दुख कणु जम मार करै खुलहान मनमुख सुख ना पाई है गुरमुख सुख सुभान ऐथै धंध पटाई है सच लिखत परवान हर

जिस हर मन वसै तिस मेले गुर संयोग काया कामन जी करी भोगे भोगण हार इस सियो नेहो ना की जई जो दिसै चलन हार गुरमुख रवह सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल परगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पाव है दरगाह जाए। श्री राग महला पहला हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कसवटी लाईए तुलिए पूरे तोल कीमत किने ना पाईए रिद मानक मोल अमोल पाई रे हर हीरा गुर माहे सत संगत सत गुर पाईए अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर धन रास लै पाईए गुर परगास ज्यों अगन मरै जल पाए त्यों तृष्णा दासन दास जम जंदार न लगई त्यों भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ न पावई सच रते सच पाए साच

गुर मिल पाओ जल लंगिया दरगाह पत परवान नानक ते मुख उजले धुनि उपजै शब्द निशान श्री राग महला पहला वणज करहो वणजारिहो वखर लेहो संभाल तैसी वस्त वसाही है जैसी निबह नाल अगे साहु सुजान है लैसी वस्त संभाल भाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर लै चलो सहो देखै पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों किन्ना सुख होए खोटै वणज वणजै मन तन खोटा होए ठाही पाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नेतरोए खोटे पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए खोटे जात ना पत है खोट ना सी जस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला राम नाम रंग रतिया पार ना भरम तिना हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माह श्री राग महला पहला कर दूजा तन जो

काल मणकड़ा आपे अंदर लाल आपे बहो बिदरंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वै सुहागणी देख हमारा हाल।

बीज कर्मा करो सलल अपाउ सारिंग पानी मन किरसान हर हृदय जमाए लै इं पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया।

किरखा करे हिन तज आत्मै हुए त्याई जप तप संयम होहे जब राखे कमल बिगसै मद आश्रमाई बीस सप्ताह रो बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सारे दस अठार में अपरंपरो चीनै कह नानक इव एक तारे गिरी राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्दो कार।

वह रोहे, तू ओना का तेरे ओहे, असी बोल वगाड़ वगाड़ है बोल, तू नदरी अंदर तोलह तोल, जह करनी तह पूरी मत, करनी बाजहों कटे घट काट।

सच घट प्रगट होए, अंतर जिस कै सच वसै, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़ है, तिन निज घर वासा होए, मेरे राम मैं हर बिन अवर ना कोए, सतगुर सच प्रभ निर्मला, शब्द मलावा होए रहाउ।

खाई। पारस परसी है पारस हुई, ज्योति ज्योत सुमाई। जिनको पूर्व लिखिया तिन सत गुर मिलिया आई। मन भुखा भुखा मत कर है, मत तू कर है पुकार। लख चौरासी जिन सिरी सब सह दे आधार।

सलाहे सच हर पाया गुणतास शब्द रते से निर्मले हों सद बलिहार है जास हृदय जिनकै हर वसै इत घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया ते गुरमुख रहे लिव लाए रहाओ हर संत हो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर।

जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए अन दिन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिनस जाए दुख रोए जिस अंदर नाम परगास है ओह सदा सदा थिर होए एहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिवलाए पग खिसै रहना नहीं आगै ठौर ना पाए ओह वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरै हर सीती लिवलाए देखा देखी सब करे मनमुख बूझ ना पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे हैं हर नित पढ़ हैं हर गुण गाए समाए नानक तिनकी बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए। श्री राग महला तीजा जिनी एक मन नाम ते आया गुरमती विचार तिनके मुख सद उजले।

समाए, तिनका जन्म सफल है, जो चल है सतगुर पाई, कुल उधार है अपना, धन जड़ेंदी माए, हर हर नाम त्याई है, जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम त्याया, विचो हो आप गुआए, वे अंदर हो बाहर हो निर्मले, सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है, जिन गुरमति हर त्याय, श्री राग महला तीजा, हर भगता हर तन रास है, गुरपूछ कर है वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा, वखर हर नाम आधार, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर भगता अतुट भंडार, भाई रे इस मन को समझाए, हे मन आलस क्या करहे, गुरमुख नाम त्याई रहाव, हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना होवे, दुबदा बोल खुआर, सो जन रलाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राख है उरतार, मन तन सौंपे आगे धरे, हो मैं विचो मार, तन गुरमुख सो

अहनस पूर रही नित आसा, सतगुर सेव मोह परजलै, घर ही माहे उदासा रहाउ, गुरमुख कर्म कमावै बिगसै, हर बैराग आनंद, अनबिन भगत करे दिन राती, हौ मैं मारनी चंद, वड्डै भाग सत संगत पाई, हर पाया सहज आनंद, सो साधु बैरागी सोई, हिरदै नाम वसाए, अंतर लाग न तामस मूले, विचों आप गवाई, नाम निधान सतगुरु दिखालिया, हर रस पिया अगाई, जिन किने पाया साध संगती,

गुर प्रसादी मन वसै हों मैं दूर करे इहो मन धावत तां रहे जां आपे नदर करे पाई रे गुरमुख हर नाम त्याए नाम निधान सद मन वसै महली पावै थाउ रहाउ मनमुख मन तन अंध है तिसनो ठौर ना ठाउ बहु जूनी पौंदा फिरे यूं सुन्ये घर काउ गुरमती घट चानना

पार विख्या अंदर पच मोए ना उरवार ना पार माया मोहि वसारिया जगत पिता प्रतपाल बाजो गुरु अचेत है सब बद्दी जमकाल नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम संभाल।

पाय लाहा हर हर नाम मिले सहजी नाम समाय बिन गुर महल ना पाइए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लहु जिद्दू पाइए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मलावा होए श्री राग महला तीजा अमृत छोड़ बिख्या लुवाणी सेवा करह विडाणी अपना धर्म गवावह बूझह नाही अन दिन दुख विहानी मनमुख अंध ना चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा भजहो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसै ता हर विसर ना जाई रहाओ एहो शरीर माया का पुतला विच हूं मैं दुष्टि पाई आवण जाना जम्मण मरना मनमुख पत

गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचै सब कोई रहाऊ।

राय देख कुटंब मोहे लवाना चलदिया नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाई बिन गुर आप ना जाई हर जीव दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पाएन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल हो।

गुरमुख बूझे कोए बिन बूझे कर्म कमावणे जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिन्नी चाखिया तिन्नी साध पाया बिन चाखे परम पलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए पीवत हूं प्रमाण भया पूरा शब्द समाए आपे दे ता पाई है।

हाथ संभाल है छड़ी ना कितै उपाय दूजे पाए दुख नाहिंदा बहुती दे सजाई नानक नाम लगे से उबरे

सतगुरु क्या फिटकिया मंग थके संसार सच्चा शब्द ना सेवियो सब काज सुवारन हार मन मेरे सदा हर वेख हदूर जन्म मरण दुख पर हर है शब्द रहे भरपूर रहाउ सच सलाहन से सच्चे सच्चा नाम आधार सच्ची कार कमावणी सच्चे नाल प्यार सच्चा साहु वर्तदा कोई ना मेटन हार मनमुख महल ना पाएनी कूड़ मुठे कूड़ यार हम मैं करता जग मोआ गुर बिन घोर अंधार।

मन तन शीतल साच सियो सास ना बिरथा कोई। मेरे मन हर का नाम त्याए साची भगत।

अगली मनुआ रज्जा सहज सुपाय गुर का शब्द अमृत है जित पीते तिख जाय इहो मन साचा सच रत्ता सच्चे रहया समाय आखण वेखण बोलना शब्दे रहया समाय बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाय हम मैं मेरा रह गया सच्चे लया मलाय तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाय नदरी नाम ते आई है विन कर्मा पाया ना जाय पूरे भाग सत संगत लह सतगुर भेटै जिसे आय अन दिन नामे रत्या दुख बिखिया विचों जाय नानक शब्द मलावण।

प्रब जापदा बिन सतगुर बूझ ना पाए जिनको पूर्व लिखिया सतगुर पेटिया तिन आए बिन नावे सब डुमणी दूजे पाए खवाए तिस बिन घड़ी ना जीवंदी दुखी रहन विहाए परम पुलाना अंदोला फिर आवे जाए नदर करे

मामदी पापी पचह पचाई सू प्रभ नदर ना आवई मनमुख बूझ ना पाई जिस विखाले सोई वेखै नानक गुरमुख पाई। श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना तुटई हम मैं पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाई। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाउ। हर इको दाता वर्तदा दूजा अवर ना कोई शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदनी अंदर वेखदा जय पावै तै दे हम मैं।

आनंद सदा सुख है जिन्ना सच नाम आधार गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार सदा सदा साचे गुण गाव है साचे नाही प्यार कृपा करके अपनी दितोन भगत भंडार मन रे सदा आनंद गुण गाए सच्ची बाणी हर पाई है हर सिउ रह समाई रहाउ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सहज सुभाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु ना जाय जिहवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस।

सोई। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होय। नानक नाम संभाल तू, जित सेवे है सुख होय। श्री राग महला तीजा, जग हों मैं मैल दुख पाया। मल लागी दूजे पाई, मल हों मैं धोती किवें ना उतरै। जे सो तीर्थ नहाए, बहु

गुर सरणी आवे ता निर्मल हुई, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तो होए रहाउ, मन मैल भगत ना होवे, नाम ना पाया जाए, मन मुख मैले मैले मोए, जासन पत गुआई, गुर प्रसादी मन वसे, मल हउ मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरै दीपक बाली है, त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए, हम किया हम करहेंगे, हम मूर्ख गावार, करने वाला विसरिया, दूजे पाए प्यार, माया जेवड दुख नहीं, सब भव थके संसार, गुरमती सुख पाई है, सच नाम उरतार, जिसनो मिले सो मिले, हम तिस बलिहारे जाऊं, ए मन भगती रत्या, सच बाणी निज थाऊं, मन रत्ते जिहवा रत्ती, हर गुण सच्चे गाऊं, नानक नाम ना विसरै, सच्चे माहि समाऊं, श्री राग महला चौथा घर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले घर आए, जा देखा प्रभ अपना, प्रभ देखिया दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना, प्रभ कित बिद मिले मलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूर्ख मुग्ध शरणागति, कर कृपा मेले हर सोए रहाउ, सतगुरु दाता हर नाम का, प्रभ आप मलावे सोए, सतगुर हर प्रभ बुझिया, गुर जेवड अवर ना कोए, हौ गुर सरनाई टह पवा, कर दया मेले प्रभ सोए, मन हठ किने ना पाया, कर अपाव थके सब कोए, सहस सियाणप कर रहे, मन पूरे रंग ना होए, कूड़ कपट किने ना पायो।

थीयै मेरे सतगुर नाम दृढ़ाई रहाउ। नाम अमूलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवै लग्या कड रतन देवै परगास। धन वड भागी वड भागिया जो आए मिले गुर पास, जिन्ना सतगुर पुरख न भेट्यो से भागहीन वस काल। ओए फिर जोन पुआई है विच विस्ता कर विकराल, ऊना पास दुआस न पीती है जिने अंतर क्रोध चंडाल। सतगुर पुरख अमृत सर वडभागी नावह आए, हुन जन्म जन्म की मैल उतरै निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया

गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाय हीरा हीर मिल भेदया रंग चलूलै नाय मेरे गोविंदा गुण गावा तृप्त मन होए अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मलावै सोए रहाओ मन रंग हो वडभागी हो गुर तुठा करे पसाओ गुर नाम दरडाए रंग स्यों आऊ सतगुर कै बल जाऊ बिन सतगुर हर नाम ना लभई लख कोटी कर्म कमाऊ बिन भागा सतगुर ना मिलै कर बैठिया निकट नित पास अंतर अज्ञान दुख भरम है विच पड़दा दूर पई आस बिन सतगुर भेटे कंचन ना थीऐ मनमुख लोहो बूढ़ा बेड़ी पास सतगुर बहुत हर नाव है इत बिद चढ़िया जाय सतगुर कह पाण जो चलै विच बोहित बैठा आए तन तन वड भागी नानका जिन्ना सतगुर लय मलाय श्री राग महला चौथा हौ पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाऊ जिन्नी मेरा प्यारा रावया

दिल मलाए। हो सतगुरु बिट्टो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए। रहाओ हुए नमाणी तह पवा पूरे सतगुर पास। निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे सबास। हौ गुर सालाहे न रजू मैं मेले हर प्रभ पास। सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोई। बिन भागा दर्शन ना थीए भाग हीन बहर होए। जो हर प्रभ पाणा सो थिया तुर लिखिया ना मिटै कोई। आपे सतगुरु आप हर आपे मेल मलाए। आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जल है समाए। श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस अत भला। कित बिद मिले रस खाए। जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे परवाह ना बोलनी हो मल मल तुआ तिन पाए। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार। सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हो मैं मार। रहाओ गुरमुखिया सुहागनी तिन दया पई मन आई। सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए। से वड भागी वड जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वण तिन सबत है भाग हीन नहीं खाए। बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए। ओए सतगुर आगे ना निमह ओना अंतर क्रोध बलाए। हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया नानक हर वस्या मन सोए। श्री राग महला चौथा दिनस चढ़ै फिर आथवै रैन सबाई जाए। आव कटै नर ना बुझै नित मूसा लाज टुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया मनमुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए। रहाओ गुरमत हर लिव उभरे अलिप्त रहे सरनाए। उन्नी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दरगाह मनी है हरे आप लए गल लाए। गुरमुखा नु पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। अनहद धुनी दर वज दे दर सच्चै सोभा पाए। जिन्नी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सब को कह सबास। तिनकी संगत देह प्रभ मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम परगास। श्री राग महला पंजवां कर पहला क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र शिंगार। रस भोग है खुशियां करह मान है रंग अपार। बहुत करह परमायसी वरत है हुए अपार। करता चेतना आवई मन मुख अंध गुवार। मेरे मन सुख दाता हर सोए गुर प्रसादी पाईए कर्म प्राप्त होए। रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक। हैवर गैवर बहु रंगे किए रथ अथाक। किस ही चेतना पावहि बिसरिया सब साक। सिरजनहार पुलाया मिण नावै ना पाक। लेंदा बद दुआए तू माया करह एकत। जिसनो तू पतियां एंदा सो सन तुझे अनित। अहंकार करह अहंकारिया व्यापिया मन की मत। इन प्रभ आप पुलाया
ना तिस जात ना पत, सतगुर पुरख मलाया, इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है, क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना पावे कोए, नानक रत्ता रंग हर, सब जग मह चानन होए, श्री राग महला पंजवा, मन बलास बहु रंग घना, दृष्ट भूल खुशियां, छत्र धार बादशाहियां, विच सहसे परियां, भाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख बधाते, दुख सहसा मिट गया रहाव, जेते थान थनंतरा, तेते भावे आया, तन पाती वड भूमिया, मेरी मेरी कर परिया, हुक्म चलाए निसंग होए, वरतै अफरिया, सब को वस गत कर लयोन, बिन नावै खाक रलिया, कोट ते तीस सेवका, सिद्ध साधक दर खरिया, ग्रंबारी वड साहबी, सब नानक सुपन थिया, श्री राग महला पंजवां, पलके उठ पपोलिया, बिन बुझे मुगद अजान, सो प्रभ चित ना आयु, छूटैगी बेबान, सतगुर सेती चित लाए, सदा सदा रंग मान, प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा कित कफकड़ी, सब मुकदी चली रैन, रहाऊ कुदम करे पस पंखी।

माया का रंग सब फिक्का जातु बिनस निदान जा कै हृदय हर वसै सो पूरा प्रदान साधु की हो रेणुका अपना आप त्याग अपार सियाणप सगल छड गुर की चरणी लाग तिसह प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होए भाग तिसह प्राप्त पाई हो जिस देव प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिनसै हम मैं ताप नानक कौ गुर भेटिया बिनसे सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार एकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस

गुरपूरा आराध नित एकस की लिव लाग रहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनोह ना विसरै जिन सब किस वस कीता घर इको बाहर इको थान थलंतर आप जी जंत सब जिन किए आठ पहर तिस जाप एकस सेती रत्या ना हुवी सोग संताप पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोय जियो पिंड सब तिसका जो तिस भावै सो होय गुरपूरै पूरा भया जप नानक सच्चा सोए श्री राग महला पंजवां जिन्ना सतगुर सिंह चित लाया से पूरे प्रधान जिनको आप दयाल हुए किन उपजै मन ज्ञान जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम मन मेरे एको नाम त्याए सर्व सुखा सुख उपजह दरगाह पैंदा जाए रहाऊ जन्म मरण का पाऊ गया पाऊ भगत गोपाल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल जन्म मरण की मल कटी है गुरदर्शन देख निहाल थान थनंतर रव रहया पार ब्रह्म प्रभ सोए सबना दाता एक है दूजा नाही कोई किस सरनाई छुट्टी है कीता लोड़े सो होए जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिनकी शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिन्नी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान श्री राग महला पंजवां मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आई अंतर ज्योत परगासिया एक सस्यों निवलाय मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाय गुण गोविंद नित गावणी निर्मल साचै नाय मेरे मन गुर शब्दी सुख होय गुरपूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोई रहाओ मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निदान अंतर जामी सदा संग करने हार पछान गुर प्रसादी मुख उजला जप नाम दान इशनान काम क्रोध लोभ बिनसिया तजिया सब अभमान पाया लाहा लाभ नाम पूर्ण होए काम कर कृपा प्रभ मेलिया दिया अपना नाम आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरवान सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार आठ पहर गुणसार दी रत्ती रंग अपार पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां पूरा सतगुरु जे मिले पाईऐ शब्द निदान कर कृपा प्रभ अपनी जपियै अमृत नाम जन्म मरण दुख काटियै लागै सहज ध्यान मेरे मन प्रभ सरनाई पाए हर बिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन ना जाइय सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगती सच्चा शब्द वसाह कर सेवा सुख सागर है सिर शाह पातशाह चरण कमल का आसरा दूजा नाही थाओ मैं धर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ नीमाणिया प्रभ मान तू तेरे संग समाओ हर जपियै आराधियै आठ पहर गोविंद जी प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद
श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच सियो मरे ना आवे जाय ना वे छोड़िया विछड़ सब मह रहिया समाई दीन दर्द दुख भंजना सेवक कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुर मेलाया माय भाई रे मीत करहो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोय रहाउ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन होवे शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निधान नवतन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधी है दिन विसरो नहीं रात जिनको पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तन मन तन अर्पी सबो सगल वारी है एह जिंद देखै सुनै हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद किरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सहज सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर रख उर धार मेरे मन हर बिन अवर ना कोय प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोय रहाउ रतन पदार्थ मानका सोयना रूपा खाक मात पिता सुत बंध पा कूड़े सबे साक गिन कीता तिसह न जानी मन मुख पास न पाक अंतर बाहर रव रहिया तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहिया अंतर हो मैं कूर भगती नाम विहूनिया आवह वंजह पूर राख लिहो प्रभ करन हार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम भया नानक नाम ना विसरौ कर अपनी हर मया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर धन मेरा राज रूप मैं देस सुत दारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय ना वसई कार्य कितै ना लेख मेरे मन हर हर नाम त्याए कर संगत नित साधकी गुर चरणी चित लाए रहाउ नाम निधान त्याई है मस्तक होए भाग कार्य सब सुवारी है गुर की चरणी लाग हों मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग कर संगत तू साध की अठ सठ तीर्थ नाओ जियो प्राण मन तन हरे साचा इहो सुआउ एथै मिलह वडाइया दरगह पावह थाउ करे कराए आप प्रभ सब किस तिस ही हाथ मारिया पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागती सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पए प्रभ आपने गुरु हुआ कृपाल सतगुर कै अपदेसे बिनसे सर्व जंज

हर करे दया प्रभ अपनी, एक निमख ना मनो वसार रहाउ। गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार। सहजे सिफती रत्या भवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा पाइय साधु।

हर जन हर लिव उदरी नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां कर दूजा गोयल आया गोयली क्या।

जिचर वसया कंत घर जियो जियो सब कहात जा उठी चल से कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात हे अड़ै सहो सेव तू सहरड़ै सुख वस गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख सबना सहरै वंजना सब मुकलामन हार नानक तन सुहागनी।

किसह त्यागु मन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन मह त्याई छोड़ सगल सियाणपा साच शब्द लिव लाए रहाओ। दुख कलेश ना पौ ब्यापै गुरमंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन करियो ना कोई। देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहि हौ तिनके बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहि। साध संगत मन वसै साच हर का नाऊ से वडभागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर धन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार। जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिनह दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार। पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार।

जिस दे प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म।

मान अपमान मंदे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन एहु कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता।

हर हर नाम संभाल, साधु संगत मन वसै, पूर्ण होए काल रहाउ। गुर समरथ अपार गुर, वडभागी दर्शन होए, गुरिया गोचर निर्मला, गुर जीवड अवर ना कोई, गुर करता गुर करनहार, गुरम

अपार गुरी उच्चा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बांची है तितड़े सत गुर पास

ये सौ सहायर मेलिय तिल ना पुजावह रोय कीमत किन ना पाइया सब सुन सुन आख सोय पीर पै कामर सालक साधक सुहदे और शहीद सेख मसायक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना ताही

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पेर पुरख ना जानी साचे गुर कै हित प्यार निस अंधारी सुतिए क्यों पिर बिन रैन विहाय अंक जलो तन जालियो मन धन जल बल जाय जा धन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाय सेजै कंत मेहलड़ी सूती बूझ ना पाए हौ सुती पिर जागना किस को पूछो जाय सतगुर मेली पै वसी।

ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਰੰਗ ਮਜੀਤ ਆਪੇ ਮੋਤੀ ਉਜਲੋ ਆਪੇ ਭਗਤ ਬਸੀਠ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਣ।

शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल न लगई सच कर जिस ओताक नदर करे सच पाई है।

सच रास साची दरगाह बैसई भगत सच्ची अरदास पत स्यों लेखा निबड़ै राम नाम परगास ऊंचा ऊंचो आखिए

रहाउ। सब जग बांधु काल को बिन गोर काल अपार, सच रते से उबरी दुबदहा छोड़ विकार। हौ किन कै बलिहार ने दर सचै सत्यार, सी चाने ज्यो पंखिया जाली बदक हाथ। गुर राखे से उबरे होर फाथे चो गै साथ, बिन नावे चुन सुटिय कोई ना संगी साथ। सचो सच्चा आखी है सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या तिन मन सच ध्यान। मन मुख सूचे जानिय है गुरमुख जिन्ना ज्ञान। सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मलाए, साजन मिले सुख पाया जमदूत मोए बिख खाए। ना मैं अंदर हौ वसा नाओ वसै मन आए, बाज गुरु गोबार है बिन शब्द बूझ ना पाए। गुरमति परगास हुई।

आदि पंडित वाचह पोथियां ना बूझह विचार अन को मत्ती दे चल है माया का व्यापार कथनी झूठी जग पवे रहनी शब्द सो सार केते पंडित ज्योत की वेदां करह विचार वाद विरोध सलाहणी।

मैं गुण नाही कोई, हर वर नार सुहावनी, मैं पावै प्रभ सोई, नानक शब्द मलावड़ा, ना वे छोड़ा होई। श्री राग महला पहला, जप तप संयम साधिया, तीरथ कीचै वास, पुन दान चंगियाईया, बिन साचे क्या तास, जेहा राधे तेहा लुणै, बिन गुण जन्म मनास, मुंदे गुणदासी सुख होए, अवगुण त्याग समाई, गुरमत पूरा सोए रहाओ। बिन रासी वापारिया, तके कुंडा चार, मूल ना बुझै अपना, वस्त रही घर बार, बिन वखर दुख अगला, कूड़ मुठी कुड़ियार, लाहा एहन सनौतना, परखे रतन विचार, वस्त लह कर अपने, चलै कारज सार, बन जारियां स्यों बणज कर, गुरमुख ब्रह्म विचार, संतां संगत पाई है।

फिरा बिन गुर बूझ ना पाऊं नाम भूली जे फिरा फिर फिरे आऊ जाऊं पुछो जाए पंधाऊआ चले चाकर होई राजन जाने अपना दर कर ठाक ना होई नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोई श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल दे शरीर निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर सहजै ते सुख अगलो ना लागे जम तीर पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए निर्मल साचा एक तू होर मैल भरी सब जाए रहाओ हर का मंदर सोना किया करन हार राव सस दीप अनूप जोत त्रिभवन जोत अपार हाट पटन गढ़।

प्रगत सब जानिए जे मन राखै ठाई ऐसा सतगुरु जी मिले ता सहजे लय मलाए कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए खोटे ठहर ना पाईनी खरे खजाने पाए आस अंदेसा।

दुख अगला मनमुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए। वेद पकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधिका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हौ सद बलिहार जास, चहो जुग मैले मल भरे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूणिया मुह काला पत खोए, जिन्नी नाम वसारिया अवगण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाण घर वसै हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते।

हर जप नाम त्याए तू जम डरपै दुख भाग दुख घणो दुहागनी क्यों फिर रह सुहाग भाई रे अवर नाही मैं थाऊं मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊं रहा गुरमत पत साबास तिस तिस कै संग मलाऊं तिस बिन घड़ी ना जीव।

ज्यो कलर की पीत तब लग महल ना पाई है जब लग साच ना चीत शब्द रपै घर पाई है।

शब्द रत्ते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार नाम सलाहन सद सदा हर राख है उरतार सो क्यों मनहु विसारी है सब जिया का आधार शब्द मरे सो मर रह फिर मरे ना दूजी वार शब्द ही ते पाई है हर नामे लगे प्यार बिन शब्द जग भूला फिर मर जन्मे वारो वार सब सलाह है आपको बड़ो बडेरी होय गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होय नानक।

ना माने सुख से जड़ी बिन पिर बाद सिंगार दुख घणो दुहागणी ना कर सेज पतार मन रे राम जपो हो सुख होए बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सहज सिंगार सच माने पिर से जड़ी गूड़ा हित प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार सच मिनोह वर कामणी फिर मोही रंग लाए मन तन साच विगसिया कीमत कहण ना जाए हर वार घर सुहागणी निर्मल साच नाए मन मह मनुआ जी मरे ता फिर रावै नार इकतता गैराल मिले गल मोतियन का हार संत सभा सुख उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजै खिन खपै

गुरमत हुए ता पाई सच मिले सुख होय सच्चा नेहो ना टुटई जे सतगुर भेटै सोय ज्ञान पदार्थ पाई त्रिभवन सोजी होय निर्मल नाम ना विसरै।

माया परम भुलाई परम भुली दोहागणी ना फिर अंक समाई रहाउ भूली फिरै दसंतरी भूली ग्रह तज जाए भूली डूंगर थल चढ़ै पर मैं मन डोलाए तुरहों विछुनी क्यों मिलै गर्भ मुठी बिल लाए बिछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यों पावे त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है भेखी बहुत अभमान तीरथ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुर बिन किन समझाई है मन राजा सुनतान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत विचार सा तन आप गवाया।

सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसया हूं मैं बिचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए कर्म मिले ता पाई है आप ना

मैं तुझ बिन अवर न पावई, तू पावह सुख होए रहाउ। नाम सलाही रंग सिउ, गुर कै शब्द संतोख। जो दिसै सो चलसी,

तड़ी गुरबिन बूझ ना होए नाम वडाई जे मिले सच रपै पत होए जो तुद भाव है से भले खोटा खरा ना कोई गुर सरनाई छुट्टी है मनमुख खोटी रास अष्ट धात पातशाह की करिए शब्द विगास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए कहने हाथ ना लभई सच टिके पत पाए गुरमत तू सलाहना होर कीमत कहन ना जाए जित तन नाम ना पावे तित

साजी है एक चानण तेहो लोए कर्म मिले सच पाई है तुर बख्शना मेटे कोई साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाई अकथ कथा विचारी है जे सतगुर माहि समाई पी अमृत संतोखिया दरग है पैंदा जाय कट कट वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुपाई बिरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाई नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाए श्री राग महला पहला चित्ते दिसह धौल हार बग्गे बंक द्वार कर मन खुशी उसारिया दूजे हित प्यार अंदर खाली प्रेम बिन तह ढेरी तन शार पाई रे तन तन साथ ना होए राम नाम तन निर्मलो गुरदात करे प्रभ सोए रहाओ राम नाम तन निर्मलो।

मन मुख जाने अपनी तिया पूत संजोग नारी देख भगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चले वित जावणु साकत डोल डोलाई बाहर ढूंढ विगुची है कर्म है वस्त सुथाई मन मुख हो मैं करमुसी गुरमुख पल्ले पाई साकत मेरे गुण आरिया अपना मूल पछाण रखत बिंद का एहो तनु अग्नि पास पिराण पवन कै वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोई सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वस्या सोय नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होय ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंदरा होय इं सरपन कै वस जियड़ा अंतर हों मैं दोय गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोय अगन मरै जल पाई है ज्यो बारक दूध माय बिन जल कमल सोना थी है बिन जल मीन मराय नानक गुरमुख हर रास में।

अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होए आपे आप मलाए बूझे ता निर्मल होए।

बिन सतगुरु को मग ना जाने अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अन दिन भगत करह दिन राती हमै मोच काया जिस स्यों राता तै सो हुए सच्चे सच समाया आपे नदर करे पाहु लाई गुर शब्दी बीचार सतगुर सेवे सहज उपजे हमै तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उरतार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाई नाम निधान हर मन वसै हमै दुख सब जाई सतगुर शब्द सुनाया हम सद बलिहारै जाऊं अपने मन चित कह कहाई बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत वशल सुख दाता कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुर

रहाउ। बिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागू पाव, सुपने सुख ना पावी, दुख में सवै समाई। जे हर हर की कै बहुत लोची है, कीर्तना मेटिया जाय। हर का पाणा भगती मन्या, से भगत पए दर थाय। गुर शब्द दड़ावै रंग स्यों, बिन कृपा लया ना जाय। जे सौ अमृत नीरी है, पी बिख फल लागै ताय। से जन सच्चे निर्मले, जिन सतगुर नाल प्यार। सतगुर का पाणा कमावंदे, बिखहु मैं तज बेकार। मन हठ कितै उपाय ना छूटी है, सिमरत शास्त्र सुध हो जाय। मिल संगत साधु उबरे, गुर का शब्द कमाए। हर का

पाइए कर्म प्राप्त होय। श्री राग महला तीजा पंखी बिरख सुहावड़ा सच चुगै गुर पाई।

गुर कै पाणै जे चलहै ता अन दिन राचहै हर नाय रहाउ। पंखी बिरख सुहावड़े उडहै चहो दिस जाहे, जेता उडहै दुख घणे नित दाजहै तै बिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुपाए। साखा तीन नवारिया एक शब्द लिव लाए, अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाओ, तिन्ना पास ना बैसीऐ ओना घर ना ग्राओ। कटियै तै नित जालियै ओना शब्द ना नाओ, हुक्मे कर्म कमावणे पय किरत फराओ। हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊ, हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाओ। हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार, मन हट

सोहणी गुर कहि तप्यार। सच्ची भगती सच रती दर सच्चे सच्यार। आए से परवान है सब कुल का करहे उदार। सब नदरी कर्म कमावंदी नदरी बाहर ना कोई जैसे।

हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाय पाठ पढ़े ना बूझई भेखी परम पलाय गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाय माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाय बिन शब्द जग दुखिया फिरे मन मुखा नु गई खाय शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाय माया भूले सिद्ध फिर है समाध न लगे सुपाय तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाय बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुखदा माया जाय माया किसनो आखी है क्या माया कर्म कमाय दुख सुख एहो जियो बद है हम मैं कर्म कमाय बिन शब्द है परम ना चुकई ना विचो हम मैं जाय बिन प्रीति भगत ना होवई बिन शब्द है थाए ना पाय शब्दे हम मैं मारी है माया का भ्रम जाय नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सहज सुपाय बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए भगत वचल हर मन वसया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्दे हर सालाही है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पलाय मन मुख कर्म करह नहीं बूझह बिरथा जन्म गवाय गुरबाणी इस जग मह चानन कर्म वसह मन आय मन रे नाम जपो सुख होए गुर पूरा सालाही है सहज मिले प्रभ सोई रहाओ परम गया पौ भागया हर चरणी चित लाई गुरमुख शब्द कमाई है।

कह पाई। दैत पुत कर्म धर्म किस संजम ना पड़े, दूजा भाव ना जाने, सतगुर भेटे निर्मल हुआ, अन दिन नाम बखाने। एको पढ़े एको नाहु बूझे, दूजा अवर ना जाने, खट दर्शन जोगी सन्यासी, बिन गुर परम पलाए,

बिन गुर पाया न जाय, पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाई, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज ना होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोए रहाओ, सहजे गावया थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

त्रै गुण भरम भलाय पढ़िया गुणिया क्या कथिय जा मुंडो कुथा जाय चौथे पद मह सहज है

सहज मलाइसी शब्द मलावा हुई। बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार, सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार, सहजे अधिष्ट पछाणिय निरपौ।

सद निर्मल सहजे नाम समाते गुरमुख अमृत बाणी बोलह सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराध है।

नानक शब्द समाए श्री राग महला तीजा सतगुर सेवे मन निर्मला भये पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना।

पूजै सच्चे सच्चा नाम। जिन्नी हौ मैं मार पछाणिया हौ तिन बलिहारै जाऊं। मन मुख सच ना जा।

भगत सुखिये सदा सच्चै नाम रचन। श्री राग महला पंजवां, जाको मुश्किल अत बने टोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना। साख पे भज खले सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ केते आवै उस पार ब्रह्म।

करी ना किस होवै काज कित आवै उस पार ब्रह्म तानि चल होवै राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

आर ब्रह्म तन मन शीतल होए काम क्रोध मोहे वस किया किरपन लोभ प्यार चारे किलविख उन अग किए हुआ असुर संगार पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया शास्त सिमरत बेद चार मोखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए राज मिलख सिखदारियां रस भोगण बिसथार बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग मृत ना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग सब किश कीतो ने अपना जिये ना संक धरिया चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग दोहां सिरियां का खसम आप

घर पंजवा जानो नहीं भावै कवन बाता मन खोज मार्ग रहाव ध्यानी ध्यान लाव है ज्ञानी ज्ञान कमाव है प्रभ की नहीं जाता भगवती रहत जुगता जोगी कहत मुक्ता तपसी तपहराता मोनी मोन तारी सन्यासी ब्रह्मचारी उदासी उदास राता भगत नवे प्रकारा पंडित वेद पुकारा गृहस्थी गृहस्त तरमाता एक शब्दी बहुरूप अवतूता कापड़ी कौते जागूता एक तीर्थ नाता निरहार वर्ती अपरसा एक लूक ना देवह दरसा एक मन ही ज्ञाता घाट ना कि नहीं कहाया सब कहते हैं पाया जिस मेले सो भगता सगल उकत उपावा त्यागी शरण पावा नानक गुर चरण पराता एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला कर तीजा जोगी अंदर जोगिया तू भोगी।

अंत न पाया सुर्ग माच पयाल जियो हौवारी हौवार ने कुर्बान तेरे नाम नु रहाओ तुद संसार पाया सिरे सिर तंदे लाया वेख है कीता अपना कर कुदरत पासा ढाल जियो प्रगट पहार है जापदा सब नावै नो प्रतापदा सतगुर बाज ना पायो सब मोही माया जाल जियो सतगुर कहो बल जाइए जित मिले परम गत पाइए सुर नार मुन जन लोच दे सो सतगुर दिया बुझाए जियो सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखाणिए एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो एहो जगत परम पलाया आपहु तुद खवाया प्रताप लगा दोहागणी भाग जिन्ना के नाए जियो दोहागणी क्या निशानिया खसम हो खुतियां फिर है निमानिया मैले वेस तिन्ना कामणी दुखी रहन विहाए जियो सुहागणी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कह अपनी आपे लए मलाए जियो हुक्म जिन्ना नु मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सहियां से सुहागणी जिन सह नाल प्यार जियो जिन्ना पाणे का रस आया तिन विचों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सब सह लए मलाए जियो सतगुर मिले फल पाया जिन विचों अहंकरण चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय समाणिया सुख सेवा अंदर रखे है अपनी नदर करह निस्तार जियो सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिया नाम बखाणिए सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जियो हौ सतगुर बिटो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लए रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जा को जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजिया जियो पिंड दे साजिया अपने सेवक की पैज रखिया दोए कर मस्तक धार जियो सब

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियों, लगे ना तत्ती वाउ जियो, मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छेड़ा फल पाया, साहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वरतदा, जिस पावै तिसै बुझाई जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चकाया, कृपा करके अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोहे उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे भन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाउ चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अन मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़ अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, भैन भाई सब सजना, तुद जेहा नाही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाऊ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाण दा, दुइया कागल चेतना जान दा, हर इक तै कार लायोन, ज्यो पावे तिवें नभाए जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हों हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हों आया सामे ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया, कान कोई कड ना हंगई, नानक बुट्टा को गगराओ जियो, हों वारी कुमा जामदा, एक साहा तुद ते आए दा, उजड़ थे हो वसायो, हों तुद विट हो कुर्बान जियो, हर इत्थे नित ते आए दा, मन चिंदी सो फल पाए दा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निदान हर, मैं पल्ले पद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखा लिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुर सिखा लहंदा पाल कै,

मन दड़ाया, सब मुक्त हुआ सह सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब शिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो, ठोक बजाए सब डिठियां, तुसे आपे नयन छडाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रयान दा, सब सुखाली बुठियां, इहो हुआ हले मीराज जियो।

पहले पहरे छूटेगा हर चेता, दूजे पहरे रहन के बन जारिया मित्रा, पर जोबन मैं मत अहमिस काम व्यापिया बन जारिया मित्रा, अंदुले नाम ना चेता, राम नाम काटे अंतर नाही, होर जाने रस कस मीठे, ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही, जन्म मर हो गे झूठे, तीर्थ वरत सुच संयम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुबधा व्यापै दूजा, तीजे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन कटै जरुआ जिन्ह बन जा रिया मित्रा, आम कटै दिन जाए, अंतकाल पछतासी अंबले, जां जम पकड़ चलाया, सब किछ अपना कर कर राखिया, खिन मह भया पराया, बुद्ध वसरजी गई सियाणप, कर अवगुण पछताए, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे, प्रभ चित हो लिवलाए, चौथे पहरे रहन कै बन जा रिया मित्रा, बिरध भया तन खीन, अखी अंध ना दिसई बन जा रिया मित्रा, कन्नी सुने ना वैण, अखी अंध जीव रस नाही, रहे परा कौ ताणा, गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे, मन मुख आवण जाना, खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै, आए चले क्या मान, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, गुरमुख शब्द पछाण, ओड़क आया तिन सहया बन जा रिया मित्रा, जर जरवाणा कन, एक रत्ती गुण ना समाणिया बन जा रिया मित्रा, अवगण खड़सन बन, गुण संयम जावे चोट ना खावे, ना तिस जमण मरना, काल जाल जम जोहे ना साके, पाए भगत पै तरना, पत से ती जावे सहज समावे।

बन जा रहा मित्रा, हर पाया उधर मंजार, हर त्यावे हर उचरे बन जा रहा मित्रा, हर हर नाम समार, हर हर नाम जपे आराधे, विच अग्नि हर जप जीवया, बाहर जन्म भया मुख लागा, सरसे पिता मात थीवया, जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी, कर हृदय गुरमुख विचार, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हर जपिए कृपा तार, दूजे पहरे रहण के बन जा रहा मित्रा, मन लागा दूजे पाए, मेरा मेरा कर पालिए बन जा रहा मित्रा, लै मात पिता गल लाए, लावे मात पिता सदा गल सेती, मन जाने खट खवाए, जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा, दित्ते नो लपटाए, कोई गुरमुख हो ऐसो करे विचार, हर त्यावे मन लिव लाए, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, तिस काल न कबहू खाए, तीजे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा, मन लगा आल जंजाल, तन चितवे तन संचवे बन जा रहा मित्रा, हर नामा हर ना संभाल, हर नामा हर हर कदे ना संभाले, जे होवे अंत सखाई, एहो तन संपै माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई, जिसनो कृपा करे गुर मेले, सो हर हर नाम संभाल, कहो नानक तीजे पहरे प्राणी, जे जाए मिले हर नाल, चौथे पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा, हर चलन वेला आंदी, कर सेवहु पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्रा, सब चली रहण विहांदी, हर सेवहु खिन खिन ढिल मूल ना करे हो, जित अस्थिर जुग जुग हो, हर सीती सदमान हुरलिया, जन्म मरण दुख खोवो, गुर सतगुर स्वामी भेद ना जानो, जित मिल हर भगत सुखांदी, कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफलियो रहण भगतांदी, श्री राग महला पंजवां, पहले पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा, तर पाए ता उदर है माही, दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्रा, कर मोहलत कर्म कमाहे, मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे, जैसा लिखत तुर पाया, मात पिता पाई सुत बनता, तिन भीतर प्रभु संजोया, कर्म सकर्म कराए आपे, इस जनते वस किस नाही, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, तर पाए ता उदरे माहे, दूजे पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा, पर जवानी लहरी दे, बुरा भला ना पछाणी बन जा रहा मित्रा, मन मत्ता अहमेव, बुरा भला ना पछाणे प्राणी, आगे पंथ करारा, पूरा सतगुर कबहू ना सेवया, सिर ठाडी जम जंदारा, धर्म राय जब पकरस बबरे, तब क्या जवाब करे, कहो नानक दूजे पहरे प्राणी, पर जोबन लहरी दे, तीजे पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा, बिक संचय अंध अज्ञान, पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बन जा रहा मित्रा, अंतर लहर लुभान, अंतर लहर लुभान प्राणी, सो प्रभ चित न आवे, साध संगत स्यो संग न किया, बहु जोनी दुख पावे, सिरजनहार वसारिया स्वामी, एक निमख न लगो ध्यान, कहो नानक प्राणी तीजे पहरे, बिक संचे अंध अज्ञान, चौथे पहरे रहण कै बन जा रहा मित्रा, दिन नेड़े आया सोई, गुरमुख नाम संभाल तू बन जा रहा मित्रा, तेरा दरगाह बेली होई, गुरमुख नाम संभाल प्राणी, अंते हुए सखाई, एहो मोह माया तेरे संग ना चाले, झूठी प्रीत लगाई, सगली रहण गुदरी अंधियारी, सेव सतगुर चानन होए,
कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए लिखिया आया गोविंद का बन जा रहा मित्रा उठ चले कमाना साथ एक रत्ती बिनवना देवनी बन जा रहा मित्रा ऊनी तकड़े पाए हाथ लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेविया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जोग अंतर जो बोवे सो खात कहो नानक भगत सोहे दरबारी मनमुख सदा पवात श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंड अयाणी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिख हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सहोरड़ कम सिख सहोरड़ कम सिख गुरमुख हर हर सदा ते आए सहिया विच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लुड़ाई लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरख मुंद अयाणी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिख व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी एवकड़ हर जप सुहेली विच सहुरड़ खरी सोहंदी सहुरड़ विच खरी सोहंदी जिन पेवकड़ नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मिल जन सोहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवरे मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया खंड वर पंड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख न कब ही बिनसै जावे नित देवे चढ़े सो आया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले संग सहाय हर नाम त्याई बिरथा कोए ना जाए मन चिंदे से फल पावह चरण कमल चित लाए जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जीओ मित्रा दिख सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे गुर पूरा भेटै वडभागी आठ पहर प्रभ जापे आद जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी
नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निश्चल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निश्चल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख गामी इच्छ सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री वछुनिया अंतर बाहर सरबत रवया मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मेल जीवे मीना हर पी आगाने अमृत बाने सर्व सुखा मन बुठे श्री तर पाए मंगल गाए इच पुन्नी सतगुरु तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाओ सरबस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना हठ मजाहु महापिरी पसे क्यों दीदार संत सरनाई।

तीर्ज क्यों करे नाम बिहूना तन मन हीना जल बिन मछली ज्यों मरे मिल मेरे प्यारे प्राण आधारी गुण साध संग मिल गावी नानक के स्वामी तार अनग्रहो मन तन अंक समावे दखना सोहंदड़ो हबठाई कोई ना दिसै जूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेक ते चंत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बिचारी जियो सिमरत सास ग्रास।

हमारे मन वांछत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे नाथ के नाते सब के साथे जप जुए जन्म ना हारी है नानक की बेनंती प्रभ पह कृपा कर पव जल तारी है दखना धूड़ी मजन साधखे साई थिए कृपाल लद्दे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ता।

आप मूर्यो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए जाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दोख सब जोया भगत लखियन कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ न माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर।

मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे, काम क्रोध लोभ मारिया। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरिया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा, घट घट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है, तिस बिन अवर ना कोए। जो मोहे माया चित लाइंदे, से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम त्याया, हर अंत सखाई होए। मैं हर बिन अवर ना कोए। हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना मिन पाईया, हर किने न पाया नाउ। विच हौं मैं कर्म कमावंदे, ज्यों वेसवा पुत निनाउ। पिता जात तां होई है, गुर तुठा करे पसाउ। वड भागी गुर पाया, हर एलस लगा पाउ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया, हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ, गुर पूरे नाम दरड़ाया। हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ। जब लग जोबन सास है, तब लग नाम त्याए। चल दिया नाल हर चल सी, हर अंते लए छडाए। हों बलिहारी तिनको, जिन हर मन उठायाए। जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो, से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, जन नानक नाम त्याए। मन हर हर प्रीत लगाए, वड भागी गुर पाया। गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आप उपाएंदा, हर आपे देवैली। हर आपे परम पलाएंदा, हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है, से विरले के ईके। हौ बलिहारी तिनको, जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया, मन हर हर गुठड़ाहे। मन हर हर जपन करे, हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ। घट घट रमैया मन वसै, क्यों पाईऐ कित भत। गुरपूरा सतगुर भेटीऐ, हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है, हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम वसाहु है, हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम त्याया, रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्याहु हो हर प्रभ सत, गुर बचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया, से आए मिले गुर पास। सेवक पाए वणजारिया मित्रा, गुर हर हर नाम परगास। तन तन वणज वापारिया, जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले, ते आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया, जिन्ना आप तुठा गुण तास। हर त्याहु हो सास ग्रास, मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना

तब आपे तुदे उपाय कै आप कारै लाई तू आपे वेख विगसदा अपनी वडियाई हर तुदहु बाहर किछ नाही तू सच्चा साई तू आपे आप वरतदा सबनी ही थाई हरत सह त्याव संत जन हो जो लय छुड़ाई। सलोक महला पहला फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ सबना जिया इका छाओ आप हो जे को भला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लिखे पाए। महला दूजा जिस प्यारे स्योने हो किसे आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ता कह पाछे जीवना पौड़ी। तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे दस चार हट तुद साजिया वाह पार करीवे इकना नू हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे वे आप छुट्टे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। सलोक महला पहला कुदरत करके वसिया सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जां कीमत पाए ता कही ना जाए। सरै सरयत करह विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जेह तिर देखा तेह तिर मौजूद। महला तीजा गुर सभा एव ना पाईए ना नेड़ै ना दूर नानक सतगुर ता मिलै जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा नवखंड चार वेद दस अष्ट पुराण हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाणा सब तुझै त्यावहै जी जंत हर सार पाणा। जो गुरमुख हर अराध दे तिन्हौ कुरबाणा तू आपे आप वरतदा कर चोज वडाणा। सलोक महला तीजा कलोम साजनी क्या सदाई है हृदय ही लिख ले हो सदा साहिब कै रंग रहै कबहू ना टूट स्नेहो। कलोम साजनी जाए सी लिखिया पी नाले जाए नानक सह प्रीत ना जाए सी जो तुर छोड़ी सच्चै पाए। महला तीजा नदरी आमदा नाल ना चलई वेखो को व्यो पाए सतगुर सच दरड़ाया सच रहो लिवलाए नानक शब्दी सच है कर्मी पल्ले पाए। पौड़ी हर अंदर बाहर एक तू तू जान है भेत जो कीचै।

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख घड़ी कर ख्याल हर तुदहो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुता रोवे अंदर धोखा नींद ना सोवे जे तन खसमै चले रजाई दर कर सोभा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूणिया रंग कुसुंबा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसदा मुल दूजा लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार नानक नाम रते से रंगले गुर कै सहज सुपाए भगती रंग न उतरै सहजे रह सुमाए पौड़ी सृष्ट उपाई सब तुद आपे रिजक संबाहया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिनी ढाया तुद आपे पावै सुह करह तुद ओतै कम ओए लाया इक ना सच बुझायोन तिना अतुट भंडार दिवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हाथ तड़ाया सलोक महला तीजा पढ़ पढ़ पंडित बेद बखान है माया मोह सवाई दूजै पाए हर नाम वसारिया मन मूर्ख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कबहू ना चेतै जो देंदा रिजक संभाए जम का पाहा गलहु न कटियै फिर फिर आवै जाए मनमुख किशु ना सूजै अंधले पूर्व लिखिया कमाए पूरै भाग सतगुर मिलै सुख दाता नाम वसै मन आए सुख मान है सुख पैनना सुखे सुख वेहाय नानक सो नाओ मनो ना विसारी है जित दर सच्चै सोभा पाए महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुणतास गुरमती आप पछाणिया राम नाम परगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिसका सिफत करे अरदास सच्चा शब्द सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संयम मने माहे बिन नावे त्रिग जीवास गुरमती नाव पाईऐ मनमुख मोहे विनास ज्यों भावै त्यों राख तू नानक तेरा दास पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सब नारास सब तुदै पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू देहें तिस सब किश मिलै।

कर्म परापत होए सच रते गुर शब्द सियो तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनो मेले ना विछड़ै सहज समावै सोए महला तीजा सो भगौती जो भगवंत जानै गुर प्रसादी आप पछाणै धावत राखै इकत घर आणै जीवत मरै हर नाम बखाणै ऐसा भगौती उत्तम होए नानक सच समावै सोए महला तीजा अंतर कपट भगौती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए सत संगत सिंह बाद रचाए हर दिन दुखिया दूजै पाए रचाए हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर ना सुवाही सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही जिन को हुआ कृपाल हर से

हंस करे पौड़ी कीता लोड़ी है कम सो हर पह आखी है कार्य दे सवार सतगुर सच साखी है संता संग निदान अमृत चाखी है तै पंजन मेहरवान दास की राखी है नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है सलोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार हौं बलिहारी तिनको जिन त्याया हर निरंकार उन्ना के मुख सद उजले उन्ना नू सब जगत करे नमस्कार महला तीजा सतगुर मिलिया उल्टी पई नवनिध खर्च्यो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिर निज कर वसै निज थाए अनहद धुनी सद वज दे हुन मन हर लिव लाए नानक हर भगत तिना कै मन वसै जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी हौं ढाडी हर प्रभ खसम का

प्राणी जरा मरण भौ विसर गया कटंब देख बिकसह कमला ज्यो पर कर जो है कपट नरा दूड़ा आयो हे जमह तना तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए कोई कोई साजन आई कह मिल मेरे बीठला ले बाहड़ी वलाए मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पै अमर पया माया मूठा चेत सनाही जन्म गवायो आलसिया बिखम घोर पंथ चालना प्राणी राव सस तह ना प्रवेशं माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसार आज मेरा मन प्रगट भया है पेखी अले धर्म राहो तह कर दल करन महाबली।

बदते त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचरज एक सुनोरे पंडिया अब किस कहन न जाई सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह धार चोय अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन भवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया प्रखोतम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब भरम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी।

ए नार गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचर अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिख है भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुट्टी दे देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आचो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहू रविदास सम दल समझावे को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभउ गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया बड़ भागी हर नाम त्याया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पल्लै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पल्लै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावे मेरे प्राण जीवाया।

प्रीतम दस्ते तिसकै हौं वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौं सतगुर विटों कुमाइया जीओ जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हौं सतगुर विटों सदवारिया जीओ एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौं सतगुर विटों बताया जीओ जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखां कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जीओ सत चौप दे महले चौथे के माज महला पंजवा चौप दे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चात्रक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जीओ हौं कोली जीओ कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जीओ रहाओ तेरा मुख सहावा जीओ सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो

राजु तुद मन पानी तिन कै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जीयू माज महला।

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारक पी खीर अगावे ज्यों निर्धन धन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवां अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भये कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो। माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे। जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पनीता सगल उदारी।

संग जोत मलाया। कहो नानक भ्रम कतेक वाड़ा, बहुड़ ना होई है जो ला जीओ। माज महला पंजवा, तिस कुरबानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया। वार वार जाई तिस विटो, जो मन तन तुद आरा दे जीओ। तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले। मन देवा तिसे अपने साजन, जिन गुर मेल सो प्रभला दे जीओ। सेवड भागी जिन तुम जाने, सब कै मदे अलिपत निर्बाणी। साध कै संग उन पौ जल तरिया, सगल दूत उन साधे जीओ। तिनकी शरण परिया मन मेरा, मान तान तज मोह अंधेरा। नाम दान दीजै नानक कौ, तिस प्रभ अगम अगा दे जीओ। माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम हुआ असथूली। तू जल निध तू फेन बुदबदा, तुद बिन अवर ना पालिए जीओ। तू सूत मणिये पी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है। आद मद अंत प्रभ सोई, अवरना कोई दिखाली है जीओ। तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्वाण रसिया रंग राता। अपनी कर्तव्य आपे जान है, आपे तुद संभाली है जीओ। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पूरी नदर ने

जीओ से नेतर परवान जिन्नी दर्शन पेखा से कर भले जिन्नी हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जीओ सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल मिट गए आवन जाना जीओ दोए कर जोड़ एक बिनो करीजै कर कृपा डुबदा पत्थर लीजै नानक कहो प्रभ भय कृपाला प्रभ नानक मन पाणा जीओ।

दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रेण त्रे पवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई। सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय। जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै। नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

ठाकुर अत पहारी, तुमरे करतब तुम ही जान हो, तुमरी ओट गोपाला जियो, गुण गावत मन हरिया हो, कथा सुनत मल सगली खोवै।

तिह गुर प्रसाद मन धारू तुमरी कृपा ते होए परगासा सर्ब मया प्रतपाला जीव सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जीव, सब किस बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहु मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई।

खिन भीतर हर हर हर गुण जापे जीओ माज महला पंजवा। आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गाव है गुण अगम अपारी गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याई है जिन हम किए जीओ जन्म जन्म के किल बिख जावे।

कर कृपा प्रभ भगती लाभ हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवां पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइय कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्यानी जे खिन मह सगल उदारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवां जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे।

हर रुखी रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संतां से तिरंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दलाब देखोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला।

सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जमकी फासा जीओ अमृत वर्ख है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जीओ जिसका सा तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जीओ माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीओ जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पय रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरा पूर्ण होई काली जीओ सर्ब जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियल सब तृपताणी।

दान किया दुख भंजन रत्ते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सबरा।

सगल मनोरथ पूरन होए कदे ना होए दुखाला जियो। माज महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया जल थल महियल दह दिस वरसाया शांत भई बुझी सब तृष्णा आनंद भया सब ठाई जियो। सुख दाता दुख भंजन हारा आप।

प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जीओ माज महला पंजवां इनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण बसे मन माही अंगीकार किया तिन करतै दुख का डेरा टाहया जीओ मन पन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान ना दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन हुए एको स्वामी आहया जीओ जो किछ करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किशु ना जापै अपनिया संतां नूं आप सहाई प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ चरण कमल जन का आधारू आठ पहर राम नाम वापारू सहज आनंद गावह गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ माज महला पंजवां सो सच मंदर जित सच त्याई सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई सा धरत सुहावी जित वस है हर जन सच्चे नाम विटोह कुरबाणो जीओ सच वडाई कीम ना पाई कुदरत करम ना कहना जाई त्याए त्याए जीव है जन तेरे सच शब्द मन माणो जीओ सच सलाहन वड भागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है।

भरम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वाडे ऊच अपारा नौ निज नाम भरे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै साधर वाला देह दान नानक जन मांगै सदा सदा हर ध्याई जियो। माज महला।

जय सागर कटिया जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिथे लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाहो आप जपाई गुर बोहित पाए।

ऐसा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लग है जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागे, जिस लाए लय सो चरनी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निर

माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारणिया गुरमति परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाऊ।

करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साथ मिले ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणी।

सदा नाली गुर प्रसादी को नदर निहाली मेरा प्रभु अत ऊचो ऊचा कर कृपा आप मनावणिया माया मोहे एहो जग सुता।

लख चौरासी रिजक आप अपड़ाई, नानक नाम त्याए सच राती, जो तिस भावै सो कार करावणिया। माज महला तीजा, अंदर हीरा लाल बनाया, गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्लै सच बखान है, सच कसवट्टी।

बहुत पसारा, नाम निरंजन अति अगम अपारा, गुरमुख हो ऐसोई पाई, आपे बख्श मलावणिया, मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई, सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया, वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई, पै भाए भगत दृढ़ा बणिया, तेरी भगत सच्ची जे

कह आप उपाया दुबदा दूजा त्रिविध माया चौथी पौड़ी गुरमुखी उची सचो सच कमावणिया सब है सच्चा जे सच्चे पावे जिन सच जाता सो सहज समावे गुरमुख करनी सच्चे सेव है सच्चे जाए समावणिया सच्चे बाजो को अवर ना दुआ दूजे लाग जग खप खप मुआ गुरमुख होवे सो एको जाने एको सेव सुख पावणिया जी जंत सब सरन तुम्हारी आपे धर देख कच्ची।

आज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलय किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चे।

तुद सलाहे ना रजा कबहू सच्चे नावे की भुख लावणिया एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

आरे परम च कामणिया परम चकाया सदा सुख पाया गुर प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजी गावणिया सिमरत शास्त्र वेद बखाणे परमे भूला।

सावणिया गुर कृपा ते हर निरपौ ध्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धूता थाई ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किछु ना सूझै मरन लखाए आए नहीं बूझै मन मुख कर्म करे नहीं पाई बिन नामे जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईऐ मुख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती

अंदर पीजे, बैस सुथान हर गुण गावे, आपे कर सत मनावणिया, जिसनो नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी हो मैं जाई, नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै सो बा पावणिया, माज महला तीजा, सतगुर सेवै वड्डी वड्याई, हर जी अचिंत वसै मन आई, हर जीओ सफलो बिरख है अमृत, जिन पीता तिस तिखा लहावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सच संगत मेल मनावणिया, हर सत संगत आपे मेलै, गुर शब्दी हर गुण गावणिया, रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया, हर निर्मल हो मैं मैल गुआई, दर सच्चै सो

निर्मल बाणी शब्द बखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागे पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पलानी।

रहे अपना मुक्ति का दर पावनिया किलिवख काटे क्रोध नवारी गुर का शब्द रखे उरतारी।

रे विद माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार ना पावणिया, आपे रंगे रंग चढ़ाई, से जल राते गुर शब्द रंगाई, हर रंग चढ़िया अत अपारा, हर रस रस गुण गावणिया, गुरमुख रिद सिद्ध सच संयम सोई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो शब्दे होए, शब्दे ही फिर ओ पत होए। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हों वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

पावणिया। किस बाजो हूँ सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाई। हम मैं मेरा सब दुख गवाई।

अमृत बाणी मन वसाई, अमृत नाम त्यावणिया रहाउ। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरां आख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिवलाई, अमृत गुर परसादी पाई। अमृत रसना बोलै दिन राती, मन तन अमृत पियावणिया। सो किस करै जो चित ना होई, तिसदा हुक्म मेट ना सकै कोई। हुक्मे वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया। अजब कम करते हर केरे, एहो मन भूला जांदा फेरे। अमृत बाणी स्यों चित लाई, अमृत शब्द बजावणी।

अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुरु सेविया हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा त्रिपतासी कर कृपा तृष्णा बुझा।

लाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझ ते बाहर किश ना होवे, गुरमुख सो जी पावणिया। गुरमुख तत है बीचारा, अमृत भरे तेरे भंडारा।

सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मै पत गुआई अपनी बिरथा जन्म गुआवणिया गुर का शब्द को विरला बूझै आप मारे तां त्रे पवन सूझै।

मैला खाई फिर मैल वधाई, मनमुख मैल दुख पावणिया। मैली निर्मल सब हुक्म सबाई, सी निर्मल जो हर साची पाई। नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उज्जल उज्जल हंसा। मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उज्जल सदा मुख सोह। हत उज्जल नाम त्यावणिया, हौ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया। गोविंद गोविंद कह दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। रहाउ गोविंद गावह सहज सुपहाई, गुर कै भै उज्जल हौ मैं मल जाई। सदा आनंद रह भगत करह दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचै भगत दिरड़ाई।

माया मोह इस मनह नचाई, अंतर कपट दुख पावनिया, गुरमुख भगत जा आप कराई, तन मन राता सहज सुपाई, बाणी वज्जै शब्द बजाई, गुरमुख भगत थाए पावनिया, बहु ताल पूरे बाजे बजाई, ना को सुने ना मन वसाई, माया कारण पिड़ बंद नाचै, दूजै पाए दुख पावनिया, जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संयम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याई, एहा भगत हर पावनिया, गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाई, गुर चरनी चित लावनिया, माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सालाही, सच्चै नाही दुख कब ही नाही, सुख दाता सेवन सुख पाइन, गुरमत मन वसावनिया, हों वारी जीओ वारी, सुख सहज समाद लगावनिया, जो हर सेवह से सदा सोह, सुबा सुत सुहावनिया, रहाउ, सब को तेरा भगत कहाई, से भगत तेरे मन पाई, सच वाणी तुदै सालाहन, रंग राते भगत करावनिया, सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै ता चूकै फेरा, जा तुद भावै ता नाही रचावै, तू आपे नाउ जपावनिया, गुरमती हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावनिया, भगत रंग राते सदा तेरे चाई, नौ निध नाम वसया मन आई, पूरे भाग सतगुर पाया।

सह मलाई, गुर शब्द मिलह से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखह जानह सोई।

माज महला तीजा आत्म राम परगास गुर ते होवे। हौं मैं मैल लागी गुर शब्दी खोवे। मन निर्मल अन दिन भगती राता भगत करे हर पावणिया। हौं वारी जियो वारी आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। किन्ना भगत जना को सद नमस्कार कीजै जो अन दिन हर गुण गावणिया। रहाओ आपे करता कारण कराई जित पावै तित कारै लाई। पूरै भाग गुर सेवा होवै।

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हूं मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज समावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख आन दिन शब्द राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्द भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा,

की। नानक जिस नदर करे सो पाए, कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा, हर आपे मेले सेव कराए। गुर कै शब्द

पाड़ बोज मानव सामणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह है दर सच है सोबा पावणिया रहाउ अलक अपेरो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई किरपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूट है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस धावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना हुए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश श्रृंगार बनाई मन मुख आंदे से।

प्रीतम मेरे, तुद बिन अवरना कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणिया, अगम अगोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करह तू नह मलाई, पूरे गुर कै शब्द ते आई है, शब्द सेव सुख पावणिया, रसना गुणवंते गुण गावे, नाम सलाहे सच्चे पावे, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावणिया, मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुए जन्म सब बाजी।

को आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पहु पंजन, गुर शब्दी सुख पावनिया। माज महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर सब

सर्व निवासी सबना कह मन पावनिया साचा साहिब गुरमुख जापे पूरे गुर कै शब्द संजापे जिन पिया से त्रिपतासी सच्चे सच अगामणिया तिस कर सहजा सोई सोहेला अनद बनोद करे सद केला सो तनवंता।

मन तन पावणिया। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा। थान थनंतर तू है तू है, इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवनहारा, भगती पाए परे पंडारा। दया तार राखे तुद से, पूरे कर्म समावणिया। अंधकूप ते कंडे चाड़े, कर किरपा दास नदर निहाले। गुण गावे है पूर्ण अबनासी, कह सुन तोट ना आवणिया। एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ में है तुम ही पाला। माया अग्न ना पोहै तिनको, रंग रते गुण गावणिया। क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर ना जानणिया। जिसको तू प्रभ पया सहाई,

अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया, माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दयो संभाली है, मूल ना मनहु विसारी है, रहाउ संतां संगत पाई है, जित जम कह पंथ ना जाई है, तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलह ना लागे गाल जियो, जो सिमरन दे साई है, नरक ना से पाई है, तत्ती वाओ ना लगई, जिन मन बुठा आए जियो, से सुंदर सोहने साध

राम जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से ग्राम सरब सिंगार तंबोल रस सन देहि सब खाम।

जिसका निःचल ताम चेत गोविंद अरादिय होवे आनंद घना संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसह गणा एक खेन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तलमई अल पूरिया रव्या विच वणा सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना।

तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वादिया जिन्ना प्रेम बशोह हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तोह पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठै तंदै मोह इक सहर के नाम बिन अगै लई है खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो परापत होए वैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेटै हर सोए हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी जिस अगै सब निवन हर सज्जन दावन

हेठ रंगीला तिस तनी जिस कह भाग मथन असाढ़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दुइये पाइव गुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणे मथे जो लिखियास रैण मिहाणी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी।

मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार पादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देहे बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन।

मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मलावै माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाई दूजी नाही जाई जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाय आप त्याग बिनती करह लेहो प्रभु लड़ लाई।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरो वह रोज कीता किशु ना हो गई लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक हो।

तिनकी शोभा क्या गणी, जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंहु संग साध सहे लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल

लाख बेरियां हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तर मन ते जाए गुमान काम

बेनंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सो सुनी हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुर पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आदि जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को नाही तो ननहार मन तन अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेम दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बखशिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दितीन जिंद गुर शब्दी आराधिय जपिय निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइय

जिन रच रचिया तिसह ना जाने, अंधा अंध कमाई जा भजै ता ठीक कर होए, घाड़त घड़ी ना जाई नानक गुरबिन नाही पत, पत बिन पार ना पाई। महला दूजा, दिन दे थाम हूं दिता चंगा मनमुख।

जानिए। जो धर्म कमावे तिस धर्म नाउ होवे, पाप कमाणे पापी जानिए। तू आपे खेल करहे सब करती, क्या दूजा आख बखानिए। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, बिन ज्योति कोई किस करे हो दिखा सियाणिए। नानक गुरमुख नदरी आया, हर इको सुगड़ सुजानिए। पौड़ी तुदे आपे जगत अपायक, तुदे आपे तंद लाया। मोह ठगौली पाए कै, तुदे आप हो जगत खुआया। तिसना अंदर अग्न है, नह तिपतै भुखा त्याया। सहसा एहो संसार है, मर जमै आया जाया। बिन सतगुर मोह ना टुटई, सब थके कर्म कमाया। गुरमति नाम त्याई है, सुख रजा जां तुद पाया। कुल उधारे अपना धन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी, जिन हर सेती चित लाया। सलोक महला दूजा, अखी बाजो वेखना। विन कन्ना सुनना, पैरां बाजो चलना। विन हत्थां करना, जीबै बाजो बोलना।

लोभ अंतर जनता पाया, ज्यो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। इकना बख्श है मेल लह, गुरमति तुझ लाया। एक खड़े करह तेरी चाकरी, विण नावै होर ना पाया। होर कार वे कार है, एक सच्ची कार है लाया। पुत कलत कटंब है, एक अलिप्त रहे जो तुझ पाया। ओहे अंदर हूं बाहर हूं निर्मले, सच्चा नाही समाया। सलोक महला पहला, सोइने कै पर्वत गुफा करी। कै पानी पयाल, कै विच धरती कै आकाशी। उर्द रहा सिर पार, पुर कर काया कपड़ पहरा। तुआ सदाकार, बग्गा रत्ता पियला काला। बेता करी पुकार, हुए कुचील रहा मल तारी। दुर्मत मत विकार, ना हूं ना मैं ना हूं। नानक शब्द विचार। महला पहला, वस्त्र पखाल पखाले काया। आपे संयम होए, अंतर मैल लगी नहीं जाने। बाहर हूं मल मल धोए, अंधा भूल पया जम जाले। वस्त पराई अपनी कर जाने, हम मैं विच दुख काले। नानक गुरमुख हम मैं टुटे, ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपे नामो आराधे, नामे सुख समावे पवड़ी। काया हंस संजोग मेल मलाया, तिन्ही किया वजोग जिन उपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया। हरख हो सोग वजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया। सलोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई। अवरी नो समझावन जाई, मुठा आप महाए साथ है। नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा, जिसदे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाई। ओहो हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाई। जे अगे तीर्थ होए ता मल लह, छप्पड़ नातै सगवी मल लाई। तीर्थ पूरा सतगुरु, जो अन दिन हर हर नाम त्याई। ओह आप छुट्टा कुटंब सियो, दे हर हर नाम सब सृष्ट छडाई। जन नानक तिस बलिहार नै, जो आप जपै अवरा नाम जपाई। पौड़ी एक कंध मूल चुण खाहे, वन खंड वासा। एक भगवा वेश कर फिर है, जोगी सन्यासा। अंदर तृष्णा बहुत, साधन भोजन की आसा। बिरथा जन्म गवाई, ना गिरही ना उदासा। जम काल सिरहो ना उतरै, त्रे विद मनसा। गुरमति काल ना आवै नेड़ै, जा होवै दासन दासा। सच्चा शब्द सच मन, घर ही माहे उदासा। नानक सतगुर सेवन अपना, से आसा ते निरासा। सलोक महला पहला, जे रत लगे कपड़े, जामा होए पलीत। जो रत पीवे है मानसा, तिन क्यों निर्मल चीत। नानक नाओ खुदाई का, गिल हच्छे मुख।

है जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझी है गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगति परे भंडारा निर्मल नाम मन्निया गर सच्चै सचियारा।

साथ इस पावसी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार ना खाए गली पिस्त ना जाइए छुट्टै सच कमाए मारन पाहे हराम मैं होए हलाल ना जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुए तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाए पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठै पाइयन अंदर रतन भंडारा विण गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझै विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस आगै करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा विण नावै होर धन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावै अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मसावै होए मुस्लिम दीन महान मरण जीवन का भरम चुकावै रब की रजाए मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप गवावै तौ नानक सर्ब जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावै।

कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घरवार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती।

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल हो थाव पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ। महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है इवें जापै पाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ। महला पहला अग्गी पाला कपड़ हो।

मारे खसम पठाया, तबल बाज बीचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवार सन की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बहेठ। जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। महला पहला, वेख जे मिठा कटिया, कट कुट बद्दा पाए। खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। रस कस टटर पाई है, तपै तै विल लाए। पी सो फोग संभालिए।

दे खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार है लाग जन्म गवाई है विण नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत सिंह जाई है सलोक महला पहला तुद भावे ता वावह गावह तुद भावे जल नावह जा तुद भावे।

उजली सच्चा शब्द सुहाया सलोक महला पहला सबाही सालाह जिनी ते आया एक मन से पूरे साह वक्त ऊपर लड़ मोए दूजे बहुते राह मन किया मती खिंदिया बहुत पए असगाह गोते खाए ना निकलह तीजे मुही ग्राह भुख तिखा दोए पौंकियां खादा हुए स्वाह पी खाने स्यों दोस्ती।

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार लाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइय जाइय तन मह तृष्णा यग शब्द बुझाइय सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के सा

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुज सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन कर्मा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

खट दर्शन कह पीख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्ने नाउ बसंक दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना नानक

आई। हुक्म पया तुर खसम का, अती हूं टका खाई। गुरमुख स्यों मन मुख अड़े, डुबे हक न्याय। दुहां सिरियां आपे खसम, वेख कर व्यपाय। नानक एवै जानिए, सब किस तिसहर जाय। महला दूजा नानक परखे।

मूल जान गल्लां करे हान लाए हान लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास को।

साधना तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

खसमै कै दरबार टाडी वसिया, सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया। खसम पूरा पाए मनो रहस्या, दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या। सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या, सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया। ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया, नानक गुण गहरास।

रहे, जे सो तो वन पाए, नानक बख्शे बख्शी है, नाही ता पाही पाए। महला पहला। नानक बोलन चखना, दुख छड मंगी है सुख, सुख दुख दुए दर कपड़े, पहर है जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है, तिथे चंगी चुप पौड़ी। चारे कुंडा देख अंदर पालिया, सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया, उजड़ भुले राह गुर वेखा लिया, सतगुर सच्चे वाह सच संभालिया, पाया रतन कराह दीवा बालिया, सच्चा शब्द सलाहे सुखिए सच वालिया, ने डरिया डर लग गर्भ से गालिया, नाम भुला जग फिरे बेतालिया। श्लोक महला तीजा, पै विच जम्मै पै मरै,

नित सुरही सा तन दही बनोवै इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंद नदी सब सिखी नाते जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नान

ढूपै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वियोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी।

तत तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई, कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ, ताँ कै सद बलिहारे जाऊं।

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुट्टे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध मा

बोले पढ़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट वकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना होए बिन मुए क्यों पूरा होए परपंच व्याप रहया मन दोए फिर नारायण करे सो होए बोहित चढ़ो जा आवे वार थाके बोहित दरगाह मार सच सलाही तन गुरुद्वार नानक दर घर एकंकार गौड़ी महला पहला उल्टे ओ

मन मानै अमृत रस पीजै रहाउ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया। नजर पई घर घर ते जानिया, जत सत तीरथ मज्जन नाम।

गुर बचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वडियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अपयो पी आया अन पै बिसरे नाम समाया क्या डरिए डर डर है समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुपाए मिले साबास जाहे सवारे सांझ बयाल इत उत मन मुख बांदे काल अहनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले ब्रह्म दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथ है आकार तीन अवस्था कह बखियान तुरियावस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत सासत पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जां कै हृदय बसिया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माहि निरास बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एहु संसारु लब लोभ मुच कूड़ कमावे बहुत उठावे पारू तू काया मैं रुलदी देखी ज्यों धारू पर शारू सुन सुन सिख हमारी सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े बहुड़ न आवे वारी रहाऊ हों तुदे आखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करह पराई झूठी लाए तिबारी वेल पराई जो है जियड़े करह चोरी बुरियारी हंस चलिया तू पिछे रही छुट्टड़।

भोग तिसै का पाना रहाउ। साहू हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके बनजारी। जियो पिंड सब रास तिसै की, मारे आपे जीवाले। गौड़ी चेती महला पहला, अवर पंच हम एक जना। क्यों राखो कर बार मना, मार है लूट है नीत नीत।

तना अमृत केल करे नित कामन अवर लुटेन सो पंच जना ताही मड़ोली लूटिया देहरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना।

लभ लोभ की ताविसता, जपस निरंजन रचस मना, काहे बोलह जोगी कपट कना रहाउ, काया कमली हंस एयाणा, मेरी मेरी करत बिहानीता, प्रणवत नानक नांगी दाजै, फिर पाछै पछतानीता, गौड़ी चेती महला पहला, औखद मंत्र मूल मन एकै, जे कर दृढ़ चित की जैरी, जन्म जन्म के पाप कर्म के, काटन हारा ली जैरी, मन एको साहिब पाई रे, तेरे तीन गुणा संसार समाव है, अलख न लखना जाई रे रहाउ, सक्कर खंड माया तन मीठी, हम तो पांड उचाई रे, रात अनेरी सूजस नाही, लाज टूकस मूसा पाई रे, मन मुख करह तेता दुख लागै।

गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अगन बिंब जल पीतर निप

का मूड़े फिर पाछे पछताहे रे रहाओ अनता तन तरनी तरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ होए कर्मा।

गौरी बैरागण महला पहला हरनी हुआं बन वसा कंद मूल चुन खाऊं गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हो जाऊं जियो मैं बनजार नराम की तेरा नाम बकर वापार जी रहाऊ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्शन।

आए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचारु तित कर गाव हो सोहिला शिवर हो सिरजनहारु तुम गाव हो मेरे नरपहो का सोहिला हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखे गा देवनहार तेरे दान कीमत ना पवे इस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दे आवन।

शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पहरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

आवै जो पांडा होए ऊंदे पांडे टिके ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द प्यास गौड़ी ग्वारी महला तीजा।

साची वाणी शब्द विचार गावत रह जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाव। एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालनहारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा हम मैं विच सब जग बहुराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन विहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

पोतै पुन तिन हऊ मैं मारी। नानक जो नाम रते तिन कौ बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई। गुर शब्द मारन

साई, गुरमुख भगत हर नाम समाई, आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार, नानक नाम रते तिन को जयकार, गौड़ी ग्वारी महला तीजा।

रहाउ। असंत अनारी कदे ना बूजै, कथनी करे तै माया नाल लूजै, अंध अज्ञानी कदे ना सीजै। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उदारा। इस

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधेव माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पगा बरसत फराही बाबा तू ऐसे परम चुकाही जो किस करत है सोई कोई है रे तैसे जाए समाही रहाओ स्त्री पुरख होए कह क्या हुए कर्म कमाही नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माही समाही इतने जन्म भूल परे से जा पाया ता भूले नाही जाका कार्ज सोई पर जाने जे गुर कै शब्द समाही।

महला तीजा सब जग काल बस है बांदा दूजे पाई हमे कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुरचरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगाह लै छाए रहाओ लख चौरासी भरम दे मन हठिया वै जाए गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जोनी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हम मैं तजे विकार जन नानक करमी पाईन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेयड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया देव कड़ै गुण संभलै सोहरे वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरह पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मेलाइए रहाओ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आईऐ वडभागी सतगुर मिले मुख अमृत पाईऐ हमे दुबदा बिर सजाए सहजे सुख समाईऐ सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाईऐ मन मुख गर्भ ना पायो अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करै फिर पछताणी गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जानी मेरे करते एवं पावदा मन मुख परमाणी मेरा हर प्रभ लेख लखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंदप बीरा हर हर बख्श मलाए प्रभु जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जन हो जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहाओ हौ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है हम अवगण यारे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारी तू गुण दाता निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेओ मूड मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगै धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआरी महला चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे कर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रै त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी।

बणंजह रंग स्यों जे आप दयाल हुए देह हम बणजारे राम के हर वणज करावे देरा सरे रहाओ लाहा हर भगत तन खटिया हर सच्चे साहा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया होर वणज करह वापारिये अनंत तरंगी दुख माया वे जेह बणज हर लाया फल तेहा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे

अब रस मीठे मुख लग है जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक ही कुल्ली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार लहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी गुआर भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचै जियो लाए हल जोतै उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

सौदागरी सौदागर तावे धन खटे आसा करे माया मोह वधावे त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया मोह कटंब है।

चौथा नित दिन सरात लालच करे पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर भार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की कै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

कथा हमरा मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा जिन प्रीत लाई सो जानता हमरा मन चित हर बहुत प्यारा हौं कुर्बानी गुरे अपनी

बार बार हर गणत ना आवे, तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे, हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म हो जाए, हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले तूके सब सोग संतापे, गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है, मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

जन नानक हाथ विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यो जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख दे ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछै बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सके बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच्छ पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिये टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िये जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुरपूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते जन नानक नाम लए ता जीवै हर जपिए हर कृपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जीवन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे
राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जिहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहा जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजै दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजै मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभु स्वामी हम बन जारे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूढ़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया ते साकत मूढ़ देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगानी, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कित हर पहु नसीय, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिया, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिया, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिया रहाव, मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवे निज कर वसी है, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसी है, मेरे मन हर हर हर हर हर जासे उत्तम, लैला हर मन हसी है, हर हर आप दया कर देवे, ताय अमृत हर रस चखी है, मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटी है,

अन दिन अन दया बड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े।

मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कछु ना जान है आगै ज्यो हर राख है त्यों ठाडी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडी गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाओ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभ दुख पावे जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडाई गौड़ी पूर्वी महला चौथा इस गढ़ में हर राम राय है किस साधना पावे तीठा हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

हर यज्ञ में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा ने ही अरै, तिन आगह आन परीठा, मन मुख ही अरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निकस फोल फलीठा, हर प्रभ आन मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर कह आगे, सतगुर दाते नाम दड़ाया, मुख मस्तक भाग सुभागी, राम गुरमत हर लिव लागे रहाउ, कट कट रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिव लागे, हो मन तन देव काट गुरु कहो, मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागे, अंधियार है दीप ज्ञान जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ, कर वस्त लही मन जागे, साकत बदक माया तारी, तिन जम जो हन लागे, हुन सतगुर आगे सीस ना बेचिया, वे आवह जाहे अपागे, हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे, जन नानक की लाज पात गुरु है, सिर बेचे हो सतगुर आगे, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत, गुर मिले आप गवाया, हम मैं रोग गया सुख पाया, तन तन गुरु हर राया, राम गुर कै बचन हर पाया रहाउ, मेरा ही अरे प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया, मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगे, जिन विछड़िया हर गल लाया, मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हृदय नाल दिखाया, सहज आनंद भया मन मोरे, गुर आगे आप बिचाया, हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया, अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजे शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड भागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल तो वह पाम गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगानी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वड भागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वड भागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवहु संत हो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी हा जियो, मिल संत जना रंग माण रलियां जियो,
गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठै ढुल ढुल मिलिया जी।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अनदर हस जीव हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीव हर आप उपाए हर आपे वेखे हर आपे कारे लाया जीव एक खावे बख्श तोट न आवे एक न फक्का पाया जीव एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक न भिख मगाया जीव सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जीव गौड़ी माज महला चौथा मन माही मन

हर कथा मंग है हर चंगी जीओ, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जीओ, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। राव रहया नहीं दूरी जीओ, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया परपूरी जीओ, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीओ, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजे जीओ, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जीओ, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जीओ, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जीओ, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नाम मैं हर बिरहो लगाई जीओ, मेरा हर कब मित मिले सुख पाई जीओ। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ, मेरा नाम सखा हर पाई जीओ। गुण गावो संत जीओ, मेरे हर प्रभ केरे जीओ। जप गुरमुख नाम जीओ, भाग वडेरे जीओ। हर हर नाम जीओ, प्राण हर मेरे जीओ। फिर बहुड़ ना पवजल फेरे जीओ, क्यों हर प्रभ वेखा मेरा मन तन चाओ जीओ। हर मेलो संत जीओ, मन लगा पाओ जीओ। गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राव जीओ, वड भागी जप नाओ जीओ। मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ, हर मेलो संत जीओ गोविंद प्रभ पासा जीओ। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जीओ। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिलै ता जीवा जीओ। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ, मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा।

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम बिटहु कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसहु संतो जी।

सुपन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक कहो मैं मार सुमाया इन बिद

हल्ला पंजवा क्यों भ्रमिया भ्रम किसका होई जा जल थन महियल रवे आसोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंची सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहा कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश हो आसो तुझ ते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाय गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटे जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाव अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाण सगली त्याग संत जना

तिसकी ओट निमुख माहि होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनु जान प्रभु की आज्ञा सत करमान गुर कै बचन मटावहु आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवां गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रकट संसार गुर कै बचन ना आवै हार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साद जन पावो गुर मिले अपना खसम त्याव रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इस ते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखन हार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी गुआर भी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लक खरे।

दीपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप गुरमुख मीत नाम औखद सोई जन पावे कर कृपा जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कै हृदय वसै दुख दर्द तेह नानक नसै गौड़ी गुआरी महला पंजवां बहुत दर्भ कर मन ना आघाना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्ज्यो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन।

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, चोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला परपंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख इहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाईऐ, कहो नानक वड भागी पाईऐ। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभु कृपा ते साध संग मेला। रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवा।

संसार जो हलाहल सो पीवै बौरा अमृत नाम जानै कर कौरा साध संग कै नाही नेर लख चौरासी ब्रह्मता पेर एकै जाल फहाए पंखी रस रस भोग करह बहुरंगी कहो नानक जिस पये कृपाल गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआररी महला पंजवां तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ प्रभ किरपा ते बंधन छुटै तौ किरपा ते हमै टुटै तुम लाभ हो तौ लाग है सेव हम ते कछु ना होवै देव रहाउ तुद पावै ता गावा बाणी तुद पावै ता सच बखाणी तुद भावै ता सत गुरमया सर्ब सुखा प्रव तेरी दया जो तुद भावै सो निर्मल करमा जो तुद भावै सो सच धर्मा सर्ब निदान गुण तुम ही पास तू साहिब सेवक अरदास मन तन

नाम गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए। आठ पहर जिहवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े। आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह। कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी। अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जै। कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै। कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै। कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे। कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया। अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह। कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवारी। रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा। ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन। हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे। रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार। एको बनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी। हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते। दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते। संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो। पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना। तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

बसना। निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नावनिद तू पंडार, रंग रसा तू मन है आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन ताने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया। सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार। व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा। मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी रहाउ। व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता। व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज महल सिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार। व्यापत कर्म करे हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा। चार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राए, ताको कहां व्यापै माई। कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवे माई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, नैन हो नींद पर दृष्ट बेकार। श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध। मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह। साबत वस्त ओ अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी। उन तेरा कै बाप ना माई, उन तेरा कै मीत ना पाई। दर्ब स्याणप ना होए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

सो जागे जिस प्रभ कृपाल एह पूंजी साबत धन माल रहाओ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवा जाके वस खान सुल्तान जाके वस है सगल जहान जाका किया सब किश होए तिसते बाहर ना ही कोई कहो बेनंती अपने सतगुर पाए काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ सबते ऊच जाका दरबार सगल भगत जाका नाम आधार सर्ब व्यापत पूर्ण तनी जाकी शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टह जिस सिमरत जम किशु ना कह जिस सिमरत होत सूके हरे जिस सिमरत डूबत पाहन तरे संत सभा कहो सदा जयकार हर हर नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोको नाम निवास गौड़ी गुआरी महला पंजवा सतगुर दर्शन अगन निवारी सतगुर भेट तहों मैं मारी सतगुर संग नाही मन डोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच महराती शीतल शांत गुरते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ संत प्रसाद हर कीर्तन गाऊ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण मजन सब धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मह ए हमरी जिंद किरपा निध किरपाल त्यावो साध संगता बैठन पावो मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया साध संग नानक नाम लया गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरै मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जा कै कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

अगमय गोचर सदा बेअंता, सिमरमना पूरे गुरमंता, जाकी सेवा सर्व निदान, प्रभु की

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जाके है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाय बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज

कहो नानक हो तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस स्यो मन रचना। कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस स्यो नेह रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना। दोहां सनिया का कसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी गवार री महला पंजवा कल युग मह मिल आए संयोग। जिचर आ गया तिचर भोगह भोग जलै न पाइए राम स्नेही। किरत संयोग सती उठ होई रहाव। देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग न पावे बहु जोन पवाइए।

जिन प्रयोग परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगाह परवानिया गौड़ी गुआर दी महला पंजवां हम तनवंत भागठ सच

मूल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट न आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लियार लाए गौड़ी महला पंजवां डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर सतगुर अपने कौ बलिहार छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गही जय कहो नानक गुर मंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजवां जांका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी दुख दर्द भ्रम ता का भागी रहाव जां को रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जा का कहया दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जां का

कह सगल निदहन्ना गौड़ी महल्ला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किने बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसलह पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला तां की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार्य गुरु नानक को दिया गौड़ी महल्ला पंजवा कवन रूप तेरा अरादो कवन योग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पव जल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमे मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा

देव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवां मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी

हर कै मार्ग पतत पनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, करनहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाइय निदनामा, साध

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कत है ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम।

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे। कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम ते आया। तब ते तावत मा

साद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरन आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवा जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ भागै।

पहले करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजिया ले।

एक टकाई दुख बिन से सुख हर गुण गाई गुरपुरा पेटिया लिवलाई रहाउ हर का नाम दियो गुर मंत्र मिटे वसूरे उतरी चिंत आनंद पये गुर मिलत कृपाल कर कृपा।

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी पै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण।

जात पूरे गुड़ काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवां साध संग तां की सरनी परो मन तन अपना आगै धरो अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारो हर के दास के चरण नमस्कार हो सास सास प्रभ मन संभाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ता की चरणी लाग गौड़ी महला पंजवा सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट

मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए, इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले, गौड़ी महला पंजवां।

सिमरत सिमरत प्रभ का नाम सगल रोग का बिनसे आथाउ सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओ बेला कहो हौ बल जाऊ जित मेरा मन जपै हर नाउ रहाउ सफल मूरत सफल ओह करी जित रसना उचरै हर हरी सफल ओह माथा संत नमस्कारस चरण पनीत चलह हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द राख मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे बिन

कर हर हर अखर मन मह लेख रव रहे आ सरबत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी गौड़ी महला पंजवां पै मह रचियो सब संसारा तिस भउ नाहीं जिस नाम आधारा।

ब्राह्मण जाना, तिन सुख पाया जो प्रभ पाना, अगन सागर महाव्यापै माया, ते शीतल जिन सतगुर पाया।

तुमरी कृपा ते दरगाह धाम। तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे। पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, कण बिना जैसे थोथर तुखा। नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी। नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग। परत विहून

तू है मेरा स्वामी, सब किस सुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्श पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथि न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवां, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाव, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाना रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बाता चोटा खावे, अनक पड़दे मह कमावे विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाओ, संत संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विकनासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंदन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवां, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को व्यापारी पूरा,

परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्यागह रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा

प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथारित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरह हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी बडियाई

अंतरजामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमहु सब।

उक्त फल पाए। उक्त सियानप इसते कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही। गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए। पार ब्रह्म तू देह ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार। भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय। सदा कल्याण फिर दुख ना होय, प्रेम भगत भज गुणी निदान। नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा। जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तानेक, साचे साहा की मन मह टेक। महा गरीब जन साध अनाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मज्जन कर सूचे। कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाउ, हर के चरण हृदय मह बसे। जन्म जन्म के किल विख नसे, साध संग कीर्तन फल पाया। जम का मार्ग दृष्ट न आया, मन बच क्रम गोविंद आधार। ताते छुट्यो बिख संसार, कर कृपा प्रभ कीनो अपना। नानक जाप जपे हर जपना, गौड़ी महला पंजवा। पौ सरनाई जिन हर जाती, मन तन शीतल चरण हर राती। पै भंजन प्रभ मन ना बसाही, डरपत डरपत जन्म बहुत।

जन्म जरा मृत जिसवास, सू सम्रथ सिमर सास ग्रास, मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय संभाल, घर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मन तन राता राम कै रंग रहाउ। गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किल विख सब हिरिया, सोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत, चरण कमल हृदय मह जाप, नानक पेख जीवै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन इहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ। विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही, हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ना नेरे, सोवड भागी निश्चल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावे, साधु संग सिमर गोपाल, बिन नामै झूठा धन माल रहाउ। रूपवंत सो चतुर सियाणा, जिन जन मानिया प्रभ का पाणा, जग मह आया सो परवान, घट घट अप

रसायन जो जन गीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते रहाव आन रसादि सह सब चार नाम बिना निःफल संसार अंध

केकिल विख खोए सिमरह साध करह आनंद मन तन रव्या परमानंद जिसह प्राप्त हर चरण निदान नानक दास तिसह कुर्बान गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तरम नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को राखन हार, रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वड ताप, तिन मारिया जे रखे न कोई। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाउ साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मंजाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन

कहो नानक जिस कृपा तार है, हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है। गौड़ी महला पंजवां, थिर कर बैसो हर जन प्यारी,

तू संग हमारे बास जियो रहाओ, तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार, जी प्राण सुख दातिया, निमख निमख बलिहार जी, हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल, मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल, क्या सुख तेरे सम्मला, कमन विधि विचार, सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे, सो प्रसन्न भये केसवा, सेजन हर गुण गाहे, मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार, साध संग

हर तीखन को सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवों दिन रैनी, है कोई संत मलावे नेरा, रहाओ सेवा करो दास दासन की, अनक पांत तिस करो निहुरा, तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाए गुण सागर, जन्म जन्म को जात बोहोरा, आनंद सुख पेटत हर नानक, जन्म किरतार्थ सफल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, मुहे मार्ग दे बताई रहाओ, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया, एहो परम कहो क्यों जाई, एका संगत इकत ग्रह बस्ते, मिल बात न करते पाई, एक बस्त बिन पंच दोहेले, वो बस्त अगोचर ठाई, जिसका ग्रहो तिन दिया ताला, कुंजी गुर संपाई, अनक अपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुर सरनाई, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लिवलाई, पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई, मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई, सहज भया भ्रम खिन मह नाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठलै, सतगुर मुझे बतायो रहाओ, जत कत देखो तत तत तुम ही, मोहे एहो विश्वास हुए आयो, कह पह करो अरदास बेनती, जो सुनतो है रघुरायो, लहयो सहसा बंधन गुर तोरे, ता सदा सहज सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी, सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा, गुर परदा खोल दिखायो।

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौं तां कै बलिहारी जां कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा तां की कीतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा तां कै चरण परों तां जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दीसे सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैराग ने आग्या कारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै गौड़ी महला।

मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पांते कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मोको सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरे कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अन भय ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न भये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगी जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ता को नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटा प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरणी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखे पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन में जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूड नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हजूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नो सागर लहर संसार संसार गुर बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारो माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाओ कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू तली तू निर्गुण तू सरगुणी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मरह बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है
सास सास हर त्याय रहाओ, संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख ना व्यापी है, जां को गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अग्नते, नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर, गौड़ी महला पंजवां, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम रहाओ, कटिए तेरा अंगरोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया, हर हर नाम जां को गुर दिया, नानक तां का पहो गया, गौड़ी महला पंजवा, जां को बिसरे राम नाम, ताहूं को पीर, साध संगत मिल हर रवहें से गुणी

कर तल लव निध सिद्ध जो जान है हर प्रभ धनी किस नाही ता कै कमी करन हार पछानिया सर्ब सुख रंग माणिया हर धन जा कै ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै गौड़ी महला पंजवां गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो रहाओ बेबरजत बेद संतना वाहू स्यों रे हितनो हार जुआर जुआ बिदे इंद्री वस लै जितनो हरन भरन संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो नानक उदरे साध संग किरपा निद मैं जितनो गौड़ी महला पंजवां मोहे दासरो ठाकर को धान प्रभ का खाना रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा।

तेरा मन तीरा एक टेक एको आधारा जन नानक हर की लागा कारा गौड़ी महला पंजवा है कोई ऐसा हो मैं तो रह इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा अज्ञानी मनुख भया जो नाही सो लोरे रैन अंधारी कारिया कमन जुगत जित पूरे प्रम तो हारिया अनक विधि कर टोरे कहो नानक कृपा पही साध संगत निद मोरे गौड़ी महला पंजवा चिंता मन करना मई रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म जाकै सिमरन सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निद प्रभ मया धार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाय रहाओ एक रैन के पहुन तुम आए बहु जुग आस बंधाए ग्रह मंदर संपै जो दिसे ज्यों तरवर की छाए तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलक सब जाए देवनहारा बिसरियो ठाकुर खिन मह होत पराए पहरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरपहो निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नवाए जो होए कृपाल ता सतगुर मिले सब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन गुरु खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रत्न जन्म सफल गुर किया दर्शन को बलहरिय रहाओ जेते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइय जो हुए दयाल सतगुरे अपना ता एह मत बुद्ध पाइय मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूट है सर्व सुखा सुख पाइय सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आई है नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चल है कर सेवा सतगुरे अपने की गुर ते पाई है पल गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिन से सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवा।

कारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजिए जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजिए गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुखरे हरख सोग मान मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जो लो हो किस सोचो चितो तौ लो दुखन भरे जो कृपाल गुर पूरा पेटिया तौ आनंद सहजे जेती सियानप कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भये जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख न आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपौ भये संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किश करतै कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सास्त सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउ कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाई इहे पैखर पए पैरा तब इहो कहां कमावन परिया जब इहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किश आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाणी एहे ओरै मूसे रहाओ।
भरत नेम संजम मह रहता, तिनका आड़ ना पाया। आगे चलन और है भाई, ऊहा काम ना आया। तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

वेद मुख बचनी उच्चरे आगे महल ना पाईए बूझे ना ही एक सुधाखर ओहो सगली चाख चखाई है। नानक कह तो एहो बीचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेव हो अर नाम त्याव हो त्याग हो मन हो गुमानी गौड़ी माला पंजवा माधो हर हर हर मुख कही है। हम ते कशु ना हुए स्वामी ज्यो राखो हो त्यो रही है। रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लाभ हो तित ही लागा पूरन खसम हमारे। करो कृपा सर्ब के दाते एक रूप लिव लाभ हो नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो।

मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन

तुम्हारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुन कै चुप किया तद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजार पसारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रते परमेश्वर जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधिय पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाव जम कंकर नेड़ ना आवई

सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे माल खजाना थे हो कर हर

प्राणी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहाओ जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख नालीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुरी अंक।

कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राखै आप वड्याई दे, नील अनील अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूज बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखों कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख बीचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहे समाई, निज कर व्याप रहया निज ठाई, पुस्तक करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरी महला पहला, ना मन मरे न कार्य होय, मन वस दूता दुरमत दोय, मन माने गुरते एक होय, निर्गुण राम गुण वस होय, आप निवार बिचारे सोए रहाओ, मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम बुरु दूर है न ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन।

मेल मलाए गुण संग्रह औगण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना पावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसै ता कहया जाय बिन देखे कहना बिथा जाय गुरमुख दिसै सहज सुभाय सेवा सुरत एक लिवलाय सुख मांगत दुख आगल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त ना होए कर कर करता देखै सोए तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुपाए गुरमती नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मह साचो गुरमुख भाव नाम बिना नाही निज ठाव प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझै नाव माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख को चील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाक रहाए पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथों ना आवे और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणै तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चितवास काम क्रोध अहंकार बनास दूजा

नारी पुरख सबाई लोहे, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुर मोह को एक बुझाया, एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वरतै सब लोई, एक सते सब उपत होई, राह धोवे खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछान, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सलाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बीचारे, पंच मार साच उर तारे रहाओ, जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, रव सस एको ग्रह उद्यान, करनी कीर्त कर्म समान, एक शब्द एक भिख्या मांगे, ज्ञान ध्यान

माली बिन हर नाम सो देह दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर ने बखवासी पाजे बिन जगदीश झूठे देवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलावो ताज कुल है सिर छत्र बनावो बिन जगदीश कहा सच पावो खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हों मैं ममता गुर शब्द वसारी गुरमत जानिया हृदय मरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान से अवरे परपंच ब्याद क्या गै कवरे भाई मिले सच सच है सच रे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मन धोई राव ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत पर जार है सो उबरै गुर शब्द बीचा।

कामण हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी तत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस से बिन पिर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद प्राण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे बाजे तखत सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे तिसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हौ मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करत नहीं सच पाईए हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ हौ मैं कर राजे बहुतावह हौ मैं खपह जन्म मर आवह हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावै निरपो कै घर ताड़ी लावै हौ हौ कर मरना क्या पावै पूरा गुर भेटे सो झगर चकावै जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावै नानक राम भगत सुख पावै गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी भरम भलाया जो उपजै सो काल संघारिया।

है। मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाउ। अपयो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै। गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत वरोलै। सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतरगत कीनी। गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार। परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार। रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी। मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया। हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई। तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई। गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका। उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपाग तुम्हारा। जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित काट अनहत बाजे तूरा। जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा धार। जिनकै हिरदय हर हर सोई, तिनका दर्स परस सुख होई। सर्व जिया मैं एको रवे, मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवे। सो बूझै जो सतगुर पाए, हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए। अर्ध उर्ध की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने। हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए। सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा। एहन सुपालह राख ले आत्म सुख तारा। इत उत राखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा। जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है, तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी, बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की, बिन सैना अधियारा। जग बिन सत हम देखिया, लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया, सच मुक्त द्वारा। निज कर महल अपार को, अपरंपर सोई। बिन शब्द तेर को नहीं, बूझै सुख होई। क्या ले आया ले जाए क्या, फासह जम जाला। डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पताला। गुरमत नाम ना विसरै, सहजे पत पाईऐ। अंतर शब्द निधान है, मिल आप गवाईऐ। नदर करे प्रभ अपनी, गुण अंक समावै। नानक मेल ना चूकई, लाहा सच पावै। गौड़ी महला पहला, गुर प्रसादी बूझले। तो हुए नबेरा, कर कर नाम निरंजना। सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द ना छूटी है। देखो विचारा, जे लख कर्म कमावही, बिन गुर अंधियारा रहाउ। अंधे अकली बाहरे, क्या तिन स्यों कही है। बिन गुर पंथ ना सूझई, कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूझी है, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे ना जन्मे काल ना खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नामे को मुक्त ना होए। जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हृदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पर तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए। गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे तौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बागजियों लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना।

वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए, गुर कै शब्द सच लिवलाए, होमे मैला एहु संसारा, नित तीर्थ ना वै ना जाए अहंकारा, बिन गुर भेट

तेरा अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हौ मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे अंतर तामस आप ना पछाणे ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे सतगुर मेले प्रभ आप मलाए मेरे प्रभ साचे कै मन पाए हर गुण गावह सहज सुपाए बिन गुर साचे परम पलाए मनमुख अंधे सदा बिख खाए जम डंड सह सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की सरनाई हौ मैं मार सच लिवलाई सदा रह हर नाम लिवलाई सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता इन विद कुशल तेरे मेरे मीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हिरदय नाम विचों आप गवाए अनहद बाणी शब्द वजाए सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई भगती सीधे दर सोभा पाई नानक राम नाम वड्याई गौड़ी महला तीजा त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए बंधन ना टूटे है मुक्त ना पाए मुक्त दाता सतगुर जुग माहे गुरमुख प्राणी भरम गवाए सहज तुन उपजै।

आय साच न छपै जे को रखै छुपाय ज्ञानी बूझ सहज सुपाय गुरमुख साच रहिया लिभ लाय हमें माया शब्द जलाए मेरा प्रभ साचा मेल मलाय सतगुर दाता शब्द सुनाय धावत राखै ठाक रहाय पूरे गुर ते सो जी पाय आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावे नामो सेवे नाम सहज समावे अमृत नाम रसना नित गावे जिसनो कृपा करे सो हर रस पावे अनगिन हिरदय जपो जगदीसा गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ हिरदय सूख पया परगास गुरमुख गावह सच गुणतास दासन दास नित होवह दास ग्रह कटंब मह सदा उदास जीवन मुक्त गुरमुख को होई परम पदार्थ पावै सोई त्रै गुण मेटे निर्मल होई सहजे साच मिले प्रभ सोई मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई जां हिरदय वसिया सच सोई गुरमुख मन भेदिया अस्थिर होई।

सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुरु पाया पूरे वडभागी हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर किरपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर किरपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दूत सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिनसे क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन अन दिन बदे मारियन फिर वेला नाल हन हर हर राखो किरपा तार सत संगत मिलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखी है हृदय धार नाम मिले है पत पाई है नाम मन्ने है सुख होए सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हउमै मैल गवाए शब्द रत्ते से निर्मले चलहै सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए जन नानक शरणागति ज्यों भावै तिवें छडाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यार आए मन करहला सतगुर पुरख।

मन करहला अत निर्मला मल लागी हों मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाई मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय किते ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चल तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिध नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम पवह बाहर पाल गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहो जानस मंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इनह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इहो तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इहो होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी कर्ण करामन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार विवेक है दूर ना नेरे सब कह संगा सच सलाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा तिस कह हृदय रविया सोए मन पन सीतल निश्चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ जास जपत पौ अपदा जाए धावत मनुआ आवे ठाए जास जपत फिर दुख ना लागे जास जपत एह होमै भागे जास जपत बस आवह पंचा जास जपत हृदय अमृत संचा जास जपत ए तृष्णा बुझे जास जपत हर दरगाह सिजे जास जपत कोट मिटह अपराध जास जपत हर होवह साध जास जपत मन शीतल होवे जास जपत मल सगली खोवे जास जपत रतन हर मिले बहुर न छोड़े हर संग हिले जास जपत कई बैकुंठ वास जास जपत सुख सहज निवास जास जपत एह अग्न ना पोहत जास जपत एहो काल ना जोहत जास जपत तेरा निर्मल माथा जास जपत सगला दुख लाथा जास जपत मुश्किल कछु ना बने जास जपत सुन अनहत तुने जास जपत एह निर्मल सोए जास जपत कमल सीधा होए गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी जिसका हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुर पूरा गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर तारे पंच जना स्यों संग निवारे दस इंद्री कर राखे वास ता कै आत्मै होए प्रगास ऐसी दृढ़ता ता कै होए जा को दया मया।

आस नीच कुल सुन है तिसकै संग खिन मह उदर है कोट मज्जन जा कै सुन नाम कोट पूजा जा कै है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट फला गुरते भिद जानी माने अपने मैं फिर चेत बिनस जाहे माया के हेत हर अबनासी तुमरै संग मन मेरे रच राम कै रंग जा कै काम उतरै सब भूख जा कै काम ना जो है दूत जा कै काम तेरा वड गमर जा कै काम होवै तू अमर।

भांत, जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवां, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीवे है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव, बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसुआ पूत नाम, बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ट फराई, बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस पया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया, गौड़ी महला पंजवां, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे नाव, गुर प्रसाद मोहे मिलिया थाव रहाव, गुर कै बचन सुन रसन वखाणी, गुर किरपा ते अमृत मेरी बाणी, गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप, गुर कै बचन मिटिया मेरा परम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग, गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निधर, जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, किसकी कटिया जम की पासा, गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म, गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

करी नमस्कार। काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवां, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव। नाम बिना त्रिग त्रिग असनेह रहाव, नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कूकर जूठन मह पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या शिंगार। नाम बसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन मह रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए झूठे सब पाज। नाम संग मन प्रीत ना लावे, कोट कर्म करतो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना अरादा, चोर की न्याई जम पुरबादा। लाख अडंबर बहुत बिसथारा, नाम बिना झूठे पासारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी महला पंजवां, आद मद जो अंत न बाहै, सो साजन मेरा मन चाहै। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूर।

सुन पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तक्की ओट संता हां लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सुवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ कुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया, हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लब्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरू चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भुगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवद बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्यां नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सखे पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा।

मिठरस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंद न मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वस है साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सौ जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहसी मुंद मन अमाहो साजन रहसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करै बिनती रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरैगी नाह बिना प्रभु वे परवाहे धन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैण कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा धन मिलै मलाई बिन प्रीतम दुख पाए पिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावै रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै शब्दे सुहावै ता पत पावै दीपक देह उजारै सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा धन ता फिर रावे जा तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ आरे क्यों खूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अत प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नामन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोई ना पावै हठ निग्रह बेबाणै नानक सच कर शब्द सुन्यापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचार।

कूड़ मुट्ठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों हो मैं मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद न आवे जियो, भावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावे, मरिए हावे। बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती। जे गुर पावे ज्यो मिले तिवें मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल तां

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अवगुण काटे हिरदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाख है चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रहे निवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए।

करियावहु नाह प्यारी। हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सेरे अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, बजी वादाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला।

यह साध संत इकत्तर हुए हैं तहां तुझे त्यावही कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल तारिया तुद बचन गुर कै वस किया आद पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल तारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्स ध्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुर पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवा सलोक, पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन श्री तहर, चरण कमल अराधिये। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिये। कल मलै दहता शुद्ध करता, दिन सरैन आराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। विसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारी सब किसे। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा के प्रभु बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उद्म करेहा। मनाए लह हर कंते, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंते, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत है, नानक जरा मरन पै नरक निवारे। पनीत करे तिस जनत है, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत होए। गीत गोविंद गाइए, कल कलेश मिट है ब्रह्म नास है। मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम त्याइए, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समर्थ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग लिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवा सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम अपदेस, गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक, आपह किया कराया आपह करमै जोग, नानक एको रब रहया दूसर होवा ना होग पौड़ी, ओं साध सतगुर नमस्कारन आद मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह असथूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा

एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा भिन भिन त्रै गुण विस्थार निर्गुण ते सरगुण दृष्टार सगल भांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू भांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सह भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संसय भरम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक तां कै सद बलिहारा सलोक धन तन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब धूर पवड़ी तद्दा धूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ सुरग न आछ अत प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापह ताहू जो एक शाद अन कत न जाहू जाकै हीय दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हट मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूजे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझै जा कै भाग मथोर पौड़ी या युग मैं एकै को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना तारू कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो नफासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप अस आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपै पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपै लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वा का अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिख शोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत ताको भार अपार प्रीत

लवै न को एक है आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय जास रसन हर हर जस भनिय आए बस है साधु कै संगे अन बिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जाको दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

नानक जेहे मन बसह गोपाला। सलोक कुंट चार दह जिस ब्रह्मे कर्म किरत की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पवड़ी कक्का कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को। नहीं होत कस दो बारा, करने हार न भूलन हारा। काहू पंत दिखारे आपे, काहू उद्यान भ्रमत पछतापे। आपन खेल आप ही कीनो, जो जो दीनो सो नानक लीनो। सलोक हाथ खर्चत बिलछत रहे, टूट न जाहे भंडार। हर हर जपत अनेक जन, नानक नाहे सुमार। पौड़ी खखा खूना कछ नहीं, तिस समरथ कै पाहे। जो देना सो दे रहे हो, भावे तह तह जाहे। खर्च खजाना नाम तन, या भगतन की रास। हिमा गरीबी अनद सहज, जपत रह गुणतास। खेलह बिगसह अनद स्यों, जा को होत कृपाल। सदीव गनीव सुहावने, राम नाम ग्रह माल। खेद ना दुख ना दान ते, जाको नदर करी। नानक जो प्रभ पाणिया, पूरी तिना परी। सलोक गन मिन देखो मने माहे, सर पर चलनो लोग। आस अनित गुरमुख मिटे, नानक नाम अरोग। पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवो, सास सास जपनीत। कहां बसासा देह का, बिलम न करे हो मीत। नह बारक नह जोबन, नह बिरदी कस बंद। ओह बेरा नह दूजी है, जो आए पर जम फंद। ज्ञानी ध्यानी चतुर पेख, रहन नहीं ए ठाए। छाड़ छाड़ सगली गई, मूड़ तहां लपटाए। गुर प्रसाद सिमरत रह, जाहू मस्तक भाग। नानक आए सफलते, जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोखे शास्त्र वेद सब, आन ना कथतो कोय। आद जुगादी हुण होवत, नानक कै सोए। पौड़ी कग्गा कालो मन है एह, बिन हर दूसर नाही। नह हुआ नह होवना, जत कत ओही समाहे। कुलै तो मन जो आवे सरना, नाम तत कल मह पुनः चरना। काल काल अनक पछतावे, बिन हर भगत कहां थित पावे। कोल महारस अमृत ते पिया, नानक हर गुर जा को दिया। सलोक नान काले सब दिवस सास, नह बदन कटन तिल सार। जीवन लो रह परम मोह, नानक ते गुवार। पौड़ी गंगा अंगरासै काल ते, जो साकत प्रभ कीन। अनक जोन जन्मह मरह, आत्म राम ना कीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए, कर कृपा जिह आप दुआए। गणती गणी नहीं को छूटे, काची गागर सर पर फूटे। सो जीवत जिह जीवत जपया, प्रगट भये नानक नह छपया। सलोक चित चितमो चरनार बिंद, ऊंद कवल बिग शांत। प्रगट भये आपे गोबिंद, नानक संत मतांत। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा, तन तन उवा दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दह दिस भ्रम आयो, पई कृपा तब दर्शन पायो। चार बचार बिनस्यो सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टिता, नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। सलोक छाती सीतल मन सुखी, शंत गोबिंद गुण गाय। ऐसी कृपा करहु प्रभ, नानक दास दसाए। पौड़ी छछा शोहरे दास तुम्हारी, दास दासन के पानी हारी। छछा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करहु भगवंता। छाड़ सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक
जोर जुल्म फूलह कनो काची दे विकार, हम बुद बंधन परे नानक नाम छुटार पौड़ी, जज्जा जान हों कछ हुआ बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ, जो जान हों भगत ज्ञानी आग्या ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जान मैं कथनी करता व्यापारी बसधा ज्यो फिरता, साध संग जे हों मैं मारी नानक तां को मिले मरारी, श्लोक चालांगे उठ नाम जप निसबासुर आराध, कारह तुझे ना व्यापई नानक मिटे उपाद पौड़ी, चज्जा चूरन मिटे तुमारो राम नाम स्यों कर व्यवहारो, चूरत चूरत साकत मुआ जां कह हृदय होत पाओ बिया, चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दृष्टाई नानक जाको कृपा गुसाई, श्लोक यतन करो तुम अनक बिद रहन न पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो हो नानक नाम प्रीत पवड़ी, जन्या जानो दृढ़ सही बिनस जात एह हेत, गणती गणो ना गण सको ऊठ सधारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो कास्यो करिए संग, ज्ञान होया बिद सही चित झूठो माया रंग, ज्ञान सोई संत सोए प्रमते की चत पिन, अंध कूप ते कड्ढो जे हो वो सो परसन, ज्ञान कै हाथ समरथ ते कारण करने जोग, नानक ते उस्तत करो याहू कियो संयोग, श्लोक टूटे बंधन जन्म मरन साध सेव सुख पाए, नानक मनो ना बिसरे गुण निद गोबिंद राय पौड़ी, टहल करहो तौ एक की जाते बिरथा ना कोय, मन फन मुख ही है बसै जो चाहो सो होए, टहल मैल ता को मिले जा को साध कृपाल, साधु संगत तो बसै जो आपन होहे दयाल, तोहे ताहे बहु पवन बिन नावै सुख नाहे, तलह जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे, बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बनासे कदके, सलोक ठाक ना होती तिन्हों दर जेह हो वो सो प्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी, ठठा मनुआ था है नाही जो सगल त्याग एक लपटाई, ठहक ठहक माया संग।

जी रसिया ठाकुरे अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया। श्लोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी। डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान। या डेरा को श्रम कर खाल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान। डेरा निश्चल सच साध संग पाया नानक ते जन नह डुलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राय किन्ह न काल्यो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध पौड़ी। टड्डा ढूंढत कह फिरो ढूंढन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसे बन बन कहां फराहे। तेरी ताहो साध संग हम बुद बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हौ हौ आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत। पौड़ी नाना रण ते सीधी है आत्म जीतै कोए हौ मैं अनस्यो लर मरे सो सोबा दू होए। मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेह सूर तन वेस। ना को जाने आपनु एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार। रेण सगल या मन कर एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूजै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम भौ काटियै चूकै जम की जोह। पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर गुण निद गोविंद राय फल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुए परगास महली पावह ठाव। ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज। ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपालै नानक हमह आपह माई बाप। श्लोक थाके बहुबिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ। पौड़ी थत्था थिर को नहीं काए पसारु पाम अनक बंच बल छल करो माया एक अपाव। थैली संच हो श्रम करो थाक पर हो गवार मन कै कामना आ गई अंते अवसर बार। हित पाव हो गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा असनेह। कारण करन कराम नु सब विद एक कै हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ। श्लोक दासा एक निहारिया सब कछ देवन हार सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार। पौड़ी दद्दा दाता एक है सबको देवन हार देंदे तोट ना आवई अगणत भरे भंडार। दैन हार सद जीवन हारा मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा दोष नहीं काहू को मीता माया मोह बंद प्रभ कीता।
दर्द निवार है जाके आपे, नानक तेते गुरमुख त्रापे।

सद्दा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक।

संपै बहु भोग रस नानक साधर वाल पौड़ी बब्बा ब्रह्म जानत ते ब्रह्मा वैष्णो ते गुरमुख सुच धर्मा बीरा आपन बुरा मटावे ताहू बुरा निकट नहीं आवे बांधियो आपन हो बंदा दोष देत आगह को अंधा बात कीत सब रही सियान जिसे जनाब हो सो जाने नानक सलोक पै पंजन अग दूख नास मन है अराध हरे संत संग जिह रिद बसियो नानक तेना भ्रमे पौड़ी पब्बा परम मटाव हो अपना या संसार सगल है सुपना परमेश्वर नर देवी देवा परमे सिद्ध साधक ब्रह्मेवा परम परम मानुख डहकाए दुत्तर महा बिखम एह माए गुरमुख भ्रम पै मोह मटाया नानक तेह परम सुख पाया। सलोक माया डोले बहु विधि

दे रहो सुजाना, जो दीनो सो एक है बार, मन मूर्ख कह करह पकार, जो मांग है तो मांग है पिया, जाते कुशल ना काहू थिया, मांगन मांग ता एक है मांग, नानक जाते पर है पराग। सलोक मत पूरी प्रधान ते गुरपूरे मन मंत, जिह जान्यो प्रभ अपना, नानक ते भगवंत पौड़ी, मम्मा जाहू मर्म पछाना, भेटत साध संग पतियाना, दुख सुख अवा कै समत बिचारा, नरक सुरग रहत अवतारा, ताहू संग ताहू निरलेपा, पूर्ण घट घट पुरख बसेखा, वा रस मैं वाहू सुख पाया, नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो, बिन हर शूतन नाही, नानक तेह बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे पवड़ी, जैया यतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लो सिदिया, याहू जतन कर होत छटारा, वाहू जतन साध संगारा, या उबरण धारे सब को, वाहे जपे बिन उबर ना हो, याहू तरन तारन समराता, राख लेहो निर्गुण नरनाता, मन बच क्रम जेहे आप जनाई, नानक तेहे मत प्र

ना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटै तेरी बाकी रण दरगह तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाहु नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है।

देव सर्वत्र में ऊन ना कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहु, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। श्लोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुगद अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा राड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे उरिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद्ध बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। श्लोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेह मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगणत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पए, मन तन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी, खखा खरा सराहू ताहू, जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू, खरा निमा ना होत परानी, अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी, भावै खसम ता वा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता, असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे, शरण परहो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग, नानक लये समाए पौड़ी, सस्सा सियानप छाड़ इयाना, हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना, सहस भांत करह चतुराई।

प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किस सुझै, प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा।

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते करे पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

चार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदासत पीसर पीवै अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौ पी हों मैं मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि।

अपमान आपस कहो जो जाने नीचा सो गनीय सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट सा

सगल कटाको देव हुदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गत मित जानू आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्तत तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बाणी मह अमृत बाणी हर को जस सुन रसन बखानी।

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया बार व्यवस्था तुझह प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन मुख अप

भुवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय किस पर हरे चंदन लेप उतारे धोए गर्धब प्रीत पस्म संग होय अंध कूप मह पतत बिकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपश नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इस्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत बूझै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बाप।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत किया।

कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर अपदेश है

लवते रहत सब कछ जान आत्म की रहत जिस पावे तिस लय लड़ लाई थान थन अंतर रहे आसमाय सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावह तिस को सिमरत परम गत पावह जे प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याहि सदा मन अंदर जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहो तिस रसना जेहे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग जेहे प्रसाद पाठ पटंबर हंधावह तिसह त्याग कत अवर लुभावह जेहे प्रसाद सुख सेज सुई जै मन आठ पैर तांका जस गावीजै जे प्रसाद तुझ सब को मान मुखता को जस रसन बखान जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगाह मान पावह नानक पात सेती।

मन सुख पावह हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके, मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताकै, जे प्रसाद तुझ को ना पहुंचै, मन सास सास सिमरहु प्रभ उच्चे, जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताकी भगत करे, जे प्रसाद अपूखन पहरीजै, मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै, जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी, मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी, जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख प्रोए प्रभ अपने मना, जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसह त्याई, तिसह त्याई जो

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लाग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल।

सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाऊ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभ किरपा ते होए परगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभ

ता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साध क्या संग नाही हो ताप, साध क्या संग तजै सबे आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध क्या संग न कबहू तावे, साध क्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजार सह, साध क्या संग बसे थानी उच्च, साधु कै संग महल पहुंच, साध क्या संग दृढ़ है सब धर्म, साध क्या संग केवल पार ब्रह्म, साध क्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साध क्या संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं कषकाल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग न बिरता जावे, पार ब्रह्म साध हृद बसे, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग पै आग्याकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया धुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म नाम तिस नगरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान तो दास दरगाह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस

उस्तत करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुबेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट अचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थ वास्ती कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी

कई कोट भय अबमहानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूते दूर, नानक आप लिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई

दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

होए नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करावन करन जोग जोत सिपावै सोई होग। हिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार।

प्रभ भावे बिन सास्ते राखे, प्रभ भावे ता हर गुण भाखे, प्रभ भावे ता पतत उधारे, आप करे आपन विचारे, दोहा श्रेय का आप स्वामी, खेले बिगसे अंतर जामी।

आवै इसके हाथ हुए ता सब किस ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिख्या मह रचै जे जानत अपने आप बचै परमे फूला दह दिस धावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले हिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु ना आवै।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्मला।

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख।

बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदे जिसके अंतर राज अभमान सो नरक पाती होवत सोवान जो जाने मैं जो बनवंत तो होवत बिष्टा का जंत आपस कहो कर्मवंत कहावे जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

फनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, फनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगाह कहू कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह भला।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई,

को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी तिसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करन हार, इसके

जाय। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार सब।

चार अष्टपदी संत कै दुख में आर जा घटै, संत कै दुख जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाय, संत कै दुखन नरक मह पाय, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै ना कोय, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होय, संत किरपाल किरपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमा।

नानक जो तिस पाव है सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

सो होए सब घट तिसके ओह कर मैं हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करहो दिन रात तिसै त्यावहो सास ग्रास सब कछ वरतै तिसका।

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जल मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप।

ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ।

भोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यों मंदर को थम मैं थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

संत है दर आया सर्ब सुख नानक ते पाया मृतक कौ जीवालन हार भूखे कौ देवत आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिस का ओह करने जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिस कौ नाम दिया नानक सो जन निर्मल किया जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया केह लोय जां कै हिरदै इको होय सच करनी सच तां की रहत सच हिरदै सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन

घर पांकै, राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक किस पुरख का किने अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि, सगल दे

पाई सब काट इसके सब तिसके ठाव जप जप जीवै नानक हर नाम नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहि समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत बिचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझया तिसे आया स्वाद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पीखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार कौ।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाउ तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाउ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै

बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, एक कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाई है, नानक ऐसा गुरबत भागी पाई है। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोई, अमृत पीवै अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जां कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मरारी। हित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रविया रूप रंग, पये प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चल बिन भजन, विखिया सगली शार। हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार, एक सिमर नाम आधार। अवर अपाव सब मीत बसार हो, चरण कमल रिद मह उर धार हो। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवत। इहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंट उठ धावह, तो तन हर सेवा ते पावह। जिस सुख को नित बांचह मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करह भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। अनक अपावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्व निदान मह

0: नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण हुए आस, भगत भाई आत्म परगास। तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी।
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। यों रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनक अपावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे है मूर्ख मना।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पाव है सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां

मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरे आप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्थार एक ते पये एक अराध परासत गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने

अन सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहिया सतसंग हजूरी जिसका साथिन लिया मलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे घाल ना भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन दिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरहा नाम जपावहो भगत भाए तरिय संसार बिन

दर्श सुख हुए, मन बिगसे साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस्त दीजै करमया।

धार जो जो जपै सो हुए पनीत भगत भाए लावे मन हीत हम निर्गुण आर नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक कह हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कवन नडार कवन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुख आपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

आप पति यारा तह कौन कतह कौन सुनने हारा बहो बेअंत पूछते उच्चा नानक आपस को आपह पहुंचा जह आप रचियो प्रपंच अकार तेहो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन कह भई।

भार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पासार संत प्रताप दुह पाख का आप है धनी उनकी शोभा उनहू बनी आप है कौतक करे अनद चोज आप है रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुल।

नानक एको पसरिया दूजा कह विस्तार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपै एक आप विस्तार जानत सुभावै तां सृष्टि।

फल पावहु, फलत फलत दोए लेहु सवार, राम नाम अंतर उर धार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया, मन तन नाम

की दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा।

अपेखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रह सत बचन साधु सब कह जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावे ता करे विस्थार तिस भावे ता एकंकार अनक कला लखी नह जाय जिस भावे तिस लये मलाय कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए।

किन्हें कछ करा, आप भला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक।

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार।

उदर दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाई साध शरण नानक ते आई जिस मन बसै सुने लाए प्रीत जिस जन आवै।

आप तजुहु गोबिंद भजुहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तोटा हिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवे साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई।

नानक संत निर्मल भये, जिन मन वसिया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रम तो घणो, सदा संघारे नीच, हरख सोग सहसा संसार, हौ हौ करत बिहाय, जिन किए तिसह न जाननी, चित

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी चतुरथ चारे वेद सुन सोध्यो तत बीचार सर्ब खीम कल्याण निध राम नाम जप सार नरक निवारै।

विकार दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवा।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो पर पंच कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझी नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुण अंत न जान है सीख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिन सेओ।

ताहिर साध संग लिवलाई खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम ते आई सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी है एकस स्यों लिवलाय पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोबिंद भजो हो शरण पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदे आप फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत निरोधर मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

सार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइय नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइय।

कौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बेद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भगत करो ताजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्तासे कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब कौ संतोख है पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु।

हों मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब स्यों गुण गो

नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना।

को दृढ़ तिसका हुए उदहार, इलबिक काटै हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाय, हलत पलत मुखी उजला, नह पोहै तिस माय, सो सुरता सो वैष्णो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कलवंत सोए, जिन भजिया भगवंत, खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै।

हे सृजनहार पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाहंदे हमै ममतावाद जिन सलाहन से मरह खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया।

सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा। मन अंतर हो मैं रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा। मन तन रत्ता रंग सियो, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है, किस नाल तू बड़ी है, तुद जे वड होए सो आखी है, तुद जेहा तू है पढ़ी है, तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख परगड़ी है, तू सच्चा सब सदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करह सो सच्चे होए सी, ता कायत करी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिमें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। श्लोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठ सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुरु अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुज सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन

एक मन एक वर्तदा जित लगे सो थाए पाए कोई गल्ला करे कनेरिया जे घर वत हो साई खाए बिन सतगुरु सोजी ना पवे अहंकार ना विचों जाए।

ताज लह जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिलै प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटी है मिल संगत।

तिन हरि आप मलाई, गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगण शब्द जलाए, अवगण विकण पल्लरी, जिस देसो सच्चे पाए, बलिहारी गुरे अपने, जिन अवगण मेट गुण प्रगटे आए, वड्डी वडियाई वड्डे की गुरमुख आलाए, श्लोक महला चौथा, सतगुर विच वड्डी वडियाई, जो आंदिन हर हर नाम ते आवे, हर हर नाम रमत सुच संजम, हर नामे ही त्रिपतावे, हर नाम तान हर नाम देवान, हर नामो रख करावे, जो चेत लाए पूजे गुरमूरत, सो मन इच्छे फल पावे, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार दिवावे, फिर ओह वेला ओ सहत न आवे, ओह अपना बीजिया आपे खावे, नरक भोर मुहे काले खड़िया, ज्यों तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे, जहां हर हर नाम त्यावे, हर बाता आ

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच वख कडे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कित थाए पाले जिन्ना सतगुर का

मन आवे अध विच फिरे मन मुख विचारा गल्ली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिओ पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रहे दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनो दयाल हुए मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की जो आप जपे अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याई दे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाए पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ मुख कोले मन खोटे दइए विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखे नो पाया पास ना देई कोई बहन जगत मह गुहू पर सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो बेमुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहां बेमुखां दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई बेमुख सुने नफरे पौली पौंदी फावा हुए कै उठ घर आया अगे संगती कुड़मी बेमुख रलना ना मिले ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचै मार पचाया एहो अखर तिने आखिया जिन जगत सब उपाया महला चौथा साहिब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए जे साहिब कै घर वत होवे सो नफरै हाथ आवे अणहोंदी कित्थों पाए जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगी सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी नानक विचार है संत जन चार वेद कहंदे भगत मुख है ते बोल दे से वचन हवंदे प्रगट पहारा जापदा सब लोक सुनंदे सुख ना पायन मुगद नर संत नाल खहंदे ओए लोचन उन्ना गुणै नू ओए अहंकार सुनंदे ओए विचारे क्या करहें जां भाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे वैर करहें निर्वैर नाल धर्म ने आए पचंदे जो जो संत सरापिया से फिर है पवंदे पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे सलोक महला चौथा अंतर हर गुरु त्याई दा वड्डी वड्याई तुस दित्ती पूरे सतगुरु घटै नाही एक तिल किसे दी कटाई सच साहेब सतगुरु कै वल है ता झक झक मरे सब लोकाई निंदका के मुंह काले करे हर करतै आप वधाई ज्यों ज्यों निंदक निंद करहै
त्यों त्यों नित नित चढ़ै सुवाई।

रखै। हलत पलत सब तिसका गया, नित चहियां पाए झगू सुटे, झकदा झकदा झड़ पया। नित अपाव करै माया धन कारण, अगला धन भी उड़ गया। क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै, जिस अंदर सहसा दुख पया। निर्वैर नाल जे वैर विचारे, सब पाप जगतै का तिन सिर लया। ओस अगे पिछे ढोई नाही, जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया। जे सोइने नो ओह हाथ पाए, आखेहू से तीर हल गया। जे गुर की सरनी फिर ओह आवे, ता पिछले औगण बख्श लया। जन नानक अन दिन नाम त्याया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब तू ऊपर तू दीवान। जो तुद सच त्याईंदे, सच सेवन सच्चे तेरा मान। ओना अंदर सच मुख उजले, सच बोलन सच्चे तेरा तान। से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया,

सतगुर मारे जे मेलन नो बहु तेरा लुचिया ना देही मिलन करतारे सत संगत ढोई ना लहन विच संगत गुर विचारे कोई जाए मिले हुण उना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते कूड़ियारे गुर तीजी पीढ़ी वेचारिया क्या हाथ एना वेचारे गुर चौथी पीढ़ी टिकया तिन निंदक दुष्ट सब तारे कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कारज सब सवारे जो इच्छा सो फल पाए सी पुत धन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे सब निदान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर तारे सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत ललारे जन नानक मांगै धूड़ तिन जो गुरसिख मित प्यारे महला चौथा जिनको आप दे बड़ियाई जगत भी आपे आन तिनको पैरी पाए डरिया ता जे किश आप दू कीचै सब करता अपनी कला वधाए देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का जिन अपने जोर सब आन निवाए अपने भगतां की रख करे हर स्वामी निंदकां दुष्टां के मुंह काले कराए।

हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जान हो गुर सिख हो, हर करता आप मुंह कढ़ाए, गुर सिखा के मुंह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए।

सच साहा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लै गुण कथ है निरारे सेवक भाए से जन मिले गुर शब्द सुवारे तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लिखारे। सलोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला ओस दे आखे कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या ओस दा सब गया नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुंह कढ ना सके।

तै प्रतख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मुहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुरु गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वडियाई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे थाउ नाही जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह रहंदी खुंदी सब पत गुआही ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही हर तिनका दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चित लाही तुर करते आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही नावें की वडियाई वड्डी है नित सवाई चढ़ै चढ़ाही महला चौथा जे होंदै गुरु बह टिकिया तिस जन की वडियाई वड्डी होई तिस को जगत निवया सब पैरी पया जस वरत्या लोई तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै सो पूरा होई गुर की वडियाई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई जन नानक हर करतै आप बह टिकिया आपे पैज रखै प्रभ सोई पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हथ नाले गुरमुख सौदा जो करे हर वस्त संभाले नाम निदान हर

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भावसी।

हर आप होए होर केती झख झख जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुरसिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़ै सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर

तेरे भाई पौड़ी कौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आघाई एहो हर रस से जान दे ज्यो गूंगे मठियाई खाई गुरपुरे हर प्रभ सेविया मन वजी वधाई सलोक महला चौथा जिन्ना अंदर अमरथल से जान नसूलिया हर जान है से बिरहो हौ तिन बिटो साध घुम घोलिया हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग

क्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

मद मतवाले सलोक महला तीजा गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे पाणे चले सतगुरु कै ऐसा श्रृंगार करे सच्चा

उठा। सत संगत मह हर पुस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है, उपदेश कर है पर उपकारिया। हर नाम जरड़ाव है, हर नाम सुनाव है, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचै, नवखंड जगत नमस्कारिया। तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच, गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूज है पूज कराव है, सतगुर को सिर जनहारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मुंह जम मारिया। तिस अग्गै पिछै ढोई नाहीं,

वंदे शब्द लगावनहार जन नानक जिन को कृपा पई तिन सेवया सिरजनहार पौड़ी सच सच्चे के जन भगत है सच सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख खोज टंडोलिया तिन अंदरों ही सच लादया सच साहेब सच जिनी सेवया काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड्डा है सच सेवन से सच रलादया सच सच्चे नू साभास है सच सच्चा सेव फलादया सलोक महला चौथा मनमुख प्राणी मुगद है नामहीन परमाए बिन गुर मनुआ ना टिकै फिर जूनी पाए हर प्रभ आप दयाल होहे ता सतगुर मिले।

सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसमल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाऊ। हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाऊ। ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय। सतगुर

दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुए मातहारी, कूड़ कसात ओह पाप कमावे, क्या ओह सुने क्या आख सुनावे, अन्ना बोला खोए उजड़ पाए, मनमुख अंधा आवे जाए, बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी, जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, उतै सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास, ओए वल छल कर झट कढ दे, फिर जाए बह कूड़े आरा पास, विच सच्चे कूड़ ना गड़ई, मन वेखो को निरजास, कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले,

लुके अंदर ठाणी सन्नी देन विखम थाए मिठा मद माणी करमी आपो आपनी आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी सलोक महला पंजवां सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान महला पंजवां जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए पौड़ी पंजवां नारायण लया ना ठूंगड़ा पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या नित विसो चखे निंदा करदा पच मोआ विच देही पखे सच्चे साहिब मारिया कौन किसनो रखे नानक तिस शरणागती जो पुरख अलखे सलोक महला पंजवां नरक घोर बहु दुख घणे किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम महला पंजवां अवखद सभे कीते अन।

संग जोट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सभा सुन लगे।

तिन दूत अमल ते काई आसना पुनिया नित परमल हिरते किया ना जाने किरत घण विच जोनी फिरते सबे धिरां निखुटियस हिर लईस धरते विजन कलह ना देवता ता लया करते जो जो करते हमेव झड़ धरती पड़ते। सलोक महला तीजा गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए हर गुण गावे हिरदय हार परोए पवित पावन परम बीचारी जे ओस मिले तिस पार उतारी अंतर हर नाम बासना समाणी हर दर सोभा महा उत्तम बाणी जे पुरख सुने सो होए निहाल नानक सतगुर मिले पाया नाम धन माल। महला चौथा सतगुर के जी की सार न जापै के पूरे सतगुर भावे गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नु लोचै सो गुर खुशी आवै सतगुर आखै सो कार कमावन सो जप कमावै।

तिस गुर सिख फिर नेड़ ना आवे, गुर सतगुर अगे को जियो लाए काले, तिस अगे गुर सिख कार कमावे, जे ठगी आवे ठगी उठ जाए।

मन गड गडे तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हडे ज्यों भावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वडे सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उप

मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागति साध साध कुर्बाणा। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी

मर गए मर पे ना सकै मूल वे मुख होए राम ते ज्यों तस्कर उपर सूल पौड़ी सुख निदान प्रभ एक है अबनासी सुनिया जल थल मैयल पूरिया घट घट हर भणिया ऊच नीच सब एक समान कीट हस्ती बनिया मीत सखा सुत बंद पो सब तिस दे जनिया तुस नानक देवै जिस नाम तिन हर रंग मणिया।

हथे पैर भौंदा फिरे खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रह जां चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदै नाओ पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगे नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गड थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक।

मुख यूजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथै अमृत वंडी है सुखिया हर करनी जम कै पंथ ना पाई है।

नानक जन विचारिया मीठा हर का नाम पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरी जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरी है भव सागर संसार बिख सो पार उतरी है हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरी है नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित गाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अगम

सब मंदिर उत्ते सलोक महला पंजवां पठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए नानक नाम सलाह है मन तन शीतल होए महला पंजवां लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे ना कोए जिस गुर भेटै नानका जिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाओ मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै उठा एक निरंजन राव रहिया

जो जा चंडी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी मिहूनिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़ी दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिय गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया

एक जिस तो सदेवै आप जित खादै मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सुपाए तन तन बहुत उपजिया पृथ्वी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण इको सिमरी।

रंग रूप रस बाद के करह परानिया, जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही, नानक सरन द्वार जे तुद पावही पौड़ी, जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे, साध संग जिन पाया से वड भागे, नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे, नानक तूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे, श्लोक महला पंजवा, तरन सवनी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम

दिशा जल पर्वत बन राए जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम त्यावो।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है।

तरवर हौ पंखी आहे मंद भागी तेरो दर्शन नाहे तू सतगुर हौ नौ तन चेला कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जानिया तब लोग काहे दुख मानिया।

पात हर परवान, सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जौ पाईऐ जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं कीन से आत्म राम। रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेद न गई आकाई। गेंद राख जो तरिय पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहां ही, जान जान सब कह तहां ही रहाओ। कहन कहावन नह पति आई है, तो मन माने जाते हों मैं जई है। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। कहो कबीर एह कही है काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी, उपजै निपजै निपज समाए।

तौ की जय जो आपन जी जय। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवन हारा रहाऊ। या देही परमल महकंदा, तां सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शत्रपथ कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना पूर्व जन्म हो तप का हीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन पया मगहर की बासी कांसी मगहर।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाऊ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सह

तिप दे कंचन से ओ पाई है नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया रहाओ, ब्रह्म कथ कथ अंत ना पाया, राम भगत बैठे घर आया, कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज भागी, गौड़ी कबीर जी जेह मरना सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द परगासिया, अब कैसे मरूं मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम ना जा।

तिनकै सद बलिहारै जाउ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाउ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कही है सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाऊ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अन पहु पाया, गौरी कबीर जी मन का सुपहु मनह दयापी, मनह मार कवन सिद्ध थापी।

बूझै बूझनहार सुभागा रहाउ। सूरज चंद करह उजियारा, सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा। कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई, सांकल जेवरी लै है आई। आपन नगर आपते बांधिया, मोह कै पांद काल सर सांधिया। रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई, सास आपन होए जग को खाई। हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कह छूटिया। गौड़ी कबीर जी

तुझह ले तारू हिचह ता प्रेम कै चावक मारू कहत कबीर भले असवारा वेद कतेव ते रह निरारा गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए तेह मुख देखत लू कट लाए एक दुख राम राय काटो मेरा अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ काया बेगूती बहु विद भांति को जारे को गढ़ ले माटी।

राखे कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ, काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै।

अंत समाया। कैसे जीवन हुए हमारा जब ना होए राम नाम अधारा रहाओ। कहो कबीर खोजो असमान राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेहे सिर रच रच बांध तपाग सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गर्भैया।

आवै सुर सुख हमहु ना मांगिया पावै बिछिया अजहु सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन पी तन

न जाना, जिसका भरम गया तिन साच पछाना, इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पियो, यह मन लीन भय सुख देव, जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रव रहे कबीरा, गौड़ी द्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भय लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

कपि रे जी न लाज लाज तो हे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोही सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई।

कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छड़ाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर की

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो तत अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

है सूतक सूतक ओपत होई गन में सूतक मुए फुन सूतक सूतक परज बेगोई कहो रे पंडिया कौन पवीता ऐसा ज्ञान जप हो मेरे मीता रहाओ नैनो हो सूतक बैनो हो सूतक सूतक श्रवनी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई आसन की बेद

धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरख केह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुनह ना हर गुण गाव है बातन ही असमान गराव है ऐसे लोगन स्यो क्या कही है जो प्रभु किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरू भर पानी तेह निंद है जेह गंगा आनी बैठत उठत कुटलता चल है आप गए और नहू काल है छाड़ को चर्चा आन ना जान है ब्रह्मा हूं को कहो ना मान है आप गए और नहू खोव है आग लगाए मंदिर में सोव है अवर्ण हस्त आप है काने तिनको देख कबीर ल जाने राग गौड़ी बैरागन कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवत पितर न मान को मुए श्राद कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पाव है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

तिन तैसी झल देखी गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं सहिया तह उत्पत परलौ नाही जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए नाम काती हल्की लगे ना भारी रहाउ अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन सतह नाही जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहां समाही अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए कहो कबीर बल जाओ गुर अपने सत संगत मिल रही है गौड़ी पाप पुन दोए बैल बसाही पवन पूंजी परगासियो तृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिद टांड बसाहयो ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बनजारा रहाओ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा पंच

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाओ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवरना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन परम पलाने अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु

एक है बद हम ही जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर रही है कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहा किस नाही पंच तत तह नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगण कत जाही तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहां समाई।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कही है किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए।

रहाउ। खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी पौड़ी, गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिय तोल ना तुलिये, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

सह नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संजमो क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी है भाव भगत भगवान।

छाडो हो परम प्रगट होए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डरपै सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाईऐ लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या विद जगत बेगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊंच ते ऊंच।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो

जास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा ना रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पय मन बासन त्याग घटियो अबमानाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन मानाना।

बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लख ना कोई।

अद मैं जाना लिख अर मिटे ताहि न माना ओंकार लख जो कोई सोई लख मिटना ना होई।

कहां कह का समझावा, खखा इह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा, खसम जान खिमा कर रह, तो हुए निखियो अखै।

ना जाई अगह गह गह गगन रहाई कग्गा घट घट निमसै सोई घट फूटे घट कबह ना होई तां घट माही घाट जो पावा सो घट छाड़ अब घट कत तावा नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी परम स्यानप एह चचा रचत चित्र है भारी।

शाक है शत्रपत पासा, शाक के ना रहो शाद के ना आसा। रे मन मैं तो सिन सिन समझावा, ताहे शाद कत आप बंधावा।

या तीरा जिन ठग ठगया सगल जग खावा सो ठग ठगया ठौर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर मह डर रहे आसमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे न डर हुआ डर उर होए भागे टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़े हो सो गड़ मह पावा।

जाई। तन त्रि भवन मह रहो समाई, जो त्रि भवन तन माए समावा, तो तत्त है तत् मिलिया सच पावा। थत्था अथाहा थाहा नहीं पावा, ओह अथाहा एहो थिर ना रहावा। थोड़े थल थानक आरंभे, बिन ही थंबे मंदर थंबे। दद्दा देख जो बिन सनहारा,

बसेरा अर्दह उर्दह मांझ बसेरा अर्दह चाड उर्द जो आवा तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रही रतवाई निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरख है निरख मलावा पप्पा अपार पार नहीं पावा परम ज्योत स्यो परचो लावा पांचो इंद्री निग्रह करी पाप पुन दो निर्वरी फफा बिन फूल फल हुई ता फल

बिंद मलावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोई।

जैया जौ जानह तौ दुर्मत हन कर बस काया गाँव रण रूतो भाजै नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार

उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राउ खखा खोज परे जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई खोज बूझ जो करे बिचारा तो पव जल तरत ना लावे बारा सस्सा सो सह सेज सवारे सोई सही संदेह निवारे अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एहे त्री ओह कंत कहावा हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तब है मन माना है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई न्यो न्यो करत।

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का तरहो ध्यान कतनी।

बार बार हर के गुण गाव, गुरगम भेद सो हर का पाव रहाव। आदत करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब। अहनिस अखंड सुर ही जाय, तौ अनहद बीन सहज महबाय। सोमवार सस अमृत चरै,

रीत, पंच चोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, नातर खरार सहराए, बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल में हर का बास, गुर मिल दो एक सम तरह, उर्द पंकल।

माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यो लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै थावर थिर कर राखै सोई जोत दी वटी घट मह जोई बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभ जान रमत राम।

तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेऊ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौराज दिए।

व्यास जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

मूसौ को न कह समझाय, जाते आवा गमन बिलाय रहाउ। बहु विद धर्म निरूपी है, करता दिसै सब लोए, कवन कर्म ते छूटी है, जे साजे सब सिद्ध होए। कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान। बाहर उदक पखारी है, घट भीतर बेबिद बेकार, शुद्ध कवन पर होए वो, सोच कुंचर बिद व्यवहार। रब प्रगास रजनी जथागत, जानत सब संसार, पारस मानो तांबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ले लाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी, भ्रम बंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक बेचार। अनक जतन निग्रह।

पंडित पड़े रिखीश्वर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो।

सो पुरुख निरंजन हर पुरुख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह है सब त्यावह है तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो हो संत हो जी सब दुख वसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हौं तुद बिन अवर ना जा।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी ते तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाह तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको

चित्त तरे जा तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का भाव।

सर्ब निरंतर रव रहिया नाल कटंब सात वरदाता ब्रह्मा पालन सिष्ट गया आग्या अंत न पायो ताका कंस छेद क्या बड़ा पया रतन उपाये तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजै शब्द निरंजन।

याद जब लग हृदय न आवह याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिया सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन दोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर किरपा अपने घर आया ता मिल सखिया काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बिबेक बिचार हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहो मिलिया ता जानिया तिहो लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य न हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाए सच पौड़ी साचो मुख नाव सतगुर सेव पाए निज थाव मन चूरे खट दर्शन जान सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाव अधिक त्यास भेख बहु करे दुख बिख्या सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर तन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरै सिफत सलाहन।

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ता कै सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए हासा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बेख वत अत भौजल

तेल गुरमुख निर्मल रह प्यारी ज्यो जल अंब ऊपर कमल नरारी बुरा भला कहो किसनु कहिए दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

रीद अठसठ मज्जन हर रस रीद गुरमुख निर्मल मैल न लागे नानक हिरदय नाम वड्डी तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत बिचार हिरदय हर रविया हिरदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटे अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूट है विच हों मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूट ता को लेख पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारी भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारी मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाई मनसा मन है समाई नानक कृपा करी जग जीवन सहज भाई लिवलाई आसा महला पहला किसको कह सुनावे है किसको किस समझावे है समझ रही किसे पढ़ावे है पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रही ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अप

आस ग्रास एहलस अंदले दीपक दे पौ जल डूबत चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हौ बलिहारे तां कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देह जपी तेरा नाऊ दरगाह बैसण होए थाऊ जा तुद भावे तां दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसै आए नदर करे तां सतगुर मिले प्रणवत नानक पवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाउ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी

सो प्रगट जाय, सच निशान है ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखाण है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हों आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवरना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवरना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। इस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धू विनाशक। त्रिहों गुण आसमरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै कूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यो रह समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हों पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किस लेवो जो उपजै सो अलख अपेवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरडाई सगली सौदी टोटा आवे नानक राम नाम मन भावे आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै।

मेरा सहो जागे और निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला धो पदे तित सरवर डै पहिले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डुबी अले मन एक न चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया हासा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोहे रहाओ विश्वे।

मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावन तां थीऐ जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू न खूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

तहाव धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रहे जैसे भवह उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रहे लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रुदन करे हा साहू पुजूता प्रणत नानक लेखा देहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा घर सीमा महला पहला मन मोती दे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा शिंगार कामन

जहां हर हर हर कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तरे मधसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज धरी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ।

सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन पर थर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाईऐ पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआईऐ बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया ऐनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवै क्या मद छूछै भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ करै किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारै कहो नानक सुन पर थर जोगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तै की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै

कोई गुर कै दर्शन सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं, दर साचे साचे गुण गाऊं, आपे देवे सहज सुपाए, नानक कीमत कहन ना जाए। आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी।

आए, हर की मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाव, गुरमुख की मत जान कोए, विरले कर्म परापत होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाण कोए, विणनावै दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरै पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिलै सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर किरपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहे।

गुर प्रसाद वसै मन आई, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी हो।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द घर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाई, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजै लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हों मैं मारे सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गुआ।

नानक साच समावै सोई आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सपाई गुर कै भै साचै साच समाई बिन गुर पूरे भगत ना होए मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए मेरे मन हर जप सदा त्याए सदा अन

घबर ना कोई। गुरसागर पूरा भंडार, उत्तम रतन जवाहर अपार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार। आसा महला तीजा, गुर साहिर सतगुर सच सोए, पूरै भाग गुर सेवा होए, सो बूझै जिस आप बुझाए, गुर प्रसादी सेव कराए, ज्ञान रतन सब सोजी होए। गुर प्रसाद अज्ञान बनासै, अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ, मोह गमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाण।

समावै सत संगत मेल सब सूझी पाए गुर का शब्द हर भगत दृढ़ाए भाणा मने सदा सुख होए नानक सच समावै सोए हासा महला तीजा पंचपदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर भेटे गुरु गोबिंद ना फिर मरे ना आवै जाए पूरे गुरते साच समाए जिनको ना

ना जाय। पूरै सतगुर दित्ती वडियाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी मह थाप उथाप। कह कह कहना आख सुनाई, जे सौ काले थाए ना पाई। जिनकै पोतै पुन तिन्ना गुरु मलाई। सच बाणी गुर शब्द सुनाई, जहां शब्द वसै तहां दुख जाए। ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोय। जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरै शब्द मन वसाए। नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा। निरत करे बहुवाजे।

आपे जान। गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछान, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार। गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए। पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे। गुर प्रसादी भवजल तरे, गुर कै बचन भगत थाए पाए। हर जियो आप वसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मलाए। निश्चल भगत हर सियो चित लाए, भगत रते तिन सच्ची सोए। नानक नाम रते सुख होए, आसा घर अठवां काफी महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर कै भाणे सतगुर मिले सच सूझी होई। गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई। मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई। गुर कृपा ते मन वसै तां सदा सुख होई रहाउ। इस युग में निरपो हर नाम है, पाईऐ गुर विचार। बिन नामै जम कै वस है, मन मुख अंध गुआर। हर कै भाणै जन सेवा करै, बूझै सच सोई। हर कै भाणै सलाहियै, भाणै मन्नै सुख होई। हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया, मत उत्तम होई। नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई। आसा

नाम रविया सब सास ग्रासा रहाउ। नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई। नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा। आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवै हर आपे। आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई। हल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा। जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा। रहाउ हर हर गुरमह भगत रखाई। गुर

कंधा, सबने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, महला चौथा राग आसा घर छेवें के तिन, हथ कर तंत वजावै जोगी, तो तरवाजै बेन, गुरमत हर गुण बोलो जोगी, एह मनुआ हर रंग भेन, जोगी हर देहो मती उपदेश, जुग जुग हर हर एको वरतै, तिस आगै हम आदेश रहाउ, गाव है राग भांत बहु बोल है, एह मनुआ खेलै खेल, जो वह कूप सिंचन को बसधा, उठ बैल गए चर बेल, काया नगर मह कर्म हर बोव हो, हर जामै हरिया खेत, मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो, हर सिंचो हो गुरमत जेत, जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी, जो देहो मती तित चेल, जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याग हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाच हो हर हर त्याए ऐसे संत मिल है मेरे भाई। हम जन के धोवे तो पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर लिब लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद भावे है जिनकी पत पावे है थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए। भगत पंडार दिए हर अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां की काफी महला चौथा। आया मन तुराहो हूं मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरहो फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी बुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईए। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईए। अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईए हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईए। नानक आपे आप खुआईए गुरमत मन परगास सच्चा पाईए। राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं। सतगुरु मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको। रहाउ हमरे सरवण सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको। हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों रह।

उपमान। हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद, नानक सिमरत हर हर भगवान। असावरी महला चौथा, माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई। हों हर बिन खिन पल रह ना सकूं, जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ। हमरा मन बैराग बिरकत भयो, हर दर्शन मीत कै ताई। जैसे अल कमला बिन रह ना सकै, तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई। राख सरन जगदीश सुर प्यारे, मोहे शरदा पूर हर गुसाई। जन